मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5 बज

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। 6 बजने को हैं। कुछ देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान

0: संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस।

श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में पूछे गए पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उनकी इस शंका को लोक कल्याणकारी बताते हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए उनकी आंखें मोर पंख पर बनी आंख की नकली आकृतियों के समान हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं वो प्राणी मृतक के समान है। जिस जिह्वा से श्री राम का गुणगान नहीं हुआ वो मेढक की जीभ के

समान है। वो है वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता। इन उक्तियों के साथ भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाना आरंभ किया। गिरिराज किशोरी आदरपूर्वक श्रद्धानत हो पति के वचन सुनने लगीं।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस, स्वर था सुरेश वाडकर का और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है सुविचार। धार्मिक होने का अर्थ केवल एक धर्म के प्रति निष्ठा एवं सम्मान से नहीं, अपितु सभी धर्मों को एक स्वरूप सम्मान देना ही वास्तविक धार्मिक का गुण है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन, जिसमें सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में ये भक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म हमराज से, जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, समय बहरा है, कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है।

दोस्तों, जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है।

दोस्तों, जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। 8 बजने को हैं। कुछ देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी,

स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रुणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन

0: और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। यह श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बाद मौसम के, उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक

0: हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ता की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है ट्रैवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटरपार्ट सनाए तकाईची स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल हिज फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip Father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pehelgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
3: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, ISIS, Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. The two Prime Ministers stressed the need for resolute action to eliminate terrorist safe havens, dismantle terrorist financing networks and their nexus with transnational crime and halt the cross-border movement of terrorists. Towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific, the two prime ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries. They welcomed the steady progress under the Quad framework and reaffirmed their commitment to enhancing practical cooperation.

0: जय हो शुभ हो माय डियर रेडियो लवर्स, आप सबकी फेवरेट वाणी आकाशवाणी जोधपुर पर शुरू हो चला है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार, वाला मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम शुरू हो चला है तो सबसे पहले अच्छी बात ही कर लेते हैं श्रोताओं। आशा सर्व पुनः सजीवम करोति, यानी कि उम्मीदें फिर से सब कुछ जिंदा कर देती है। होप मेक्स एवरीथिंग कम अलाइव अगेन।
1: बिल्कुल श्रोताओं, इस बात के साथ प्रोग्राम का आगाज तो हो ही चुका है। कार्यक्रम नमस्कार, जिसमें आज के दिन से जुड़ी कुछ खास खास बातों के बारे में हम करेंगे बात और सुनवाएंगे साथ ही बेहतरीन से गीत। लेकिन आपको करवाते हैं पहले हमारी टीम से परिचय। तो श्रोताओं, ट्रांसमीटर से हैं फारूक अहमद शेख और नरेंद्र सिंह राठौर।
0: वहीं कंट्रोल रूम से कमान संभाले हुए हैं इंजीनियर सुनील जयपाल।
1: अनाउंसर ऑन ड्यूटी हमारे साथ हैं पौलाश दास।
0: और एफएम पर उद्घोषक हैं निशिका।
1: और श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन किया है राजेश लामरू ने।
0: और इन सब के साथ आप ही के जैसे दो रेडियो लवर्स हाजिर है आज, द न्यू नूतन सोनी और
1: मैं सूफिया खान। तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। बातें बहुत सी होगी लेकिन फिलहाल नए नवीले गीत में सुनते हैं प्लेलिस्ट से पहला गीत।

0: बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, एक मैं और एक तू मूवी का आपने सुना, कर ना चल शुरू तू। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम शुरू कर ही नहीं पाते हैं और हमारी गाड़ी एक शब्द पे आके जुड़ जाती है, सॉरी जो रुक जाती है, और वो शब्द होता है काश।
1: बिल्कुल, काश एक ऐसा शब्द है नूतन जिस पे हमारा बस नहीं है, यूं
0: हाँ
1: कहे तो।
0: बिल्कुल,
1: मतलब अगर हमने कुछ किया तो काश, अगर हमने कुछ नहीं किया तो काश।
0: हाँ बिल्कुल। और ये जो जिंदगी में छोटा सा शब्द है ना काश, ये एक बड़ा ही जो है वहाँ

0: लास्ट मीनिंग रखता है हमारी लाइफ में, और ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि हमारे जो अधूरे ड्रीम्स होते हैं और छूटे हुए जो छोटे छोटे अवसर होते हैं और अनकहे जज्बात होते हैं और नई उम्मीदों का आईना भी होता है ये शब्द।
1: बिल्कुल। तो काश ये हो जाता, काश वो हो जाता।
0: हाँ
1: ऐसा हमारे जीवन में बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जब हम इस चीज़ को बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ से जुड़ा होता है और कहीं ना कहीं ये हमारे काम से भी जुड़ा होता है, क्योंकि कभी समय की कमी या अपने सपनों की कुर्बानी कहें तो उसमें जो है ये काश शब्द अटक जाता है।
0: अपन सोचते हैं कभी कि काश मैंने अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ा होता, या कुछ और बड़ा सपना देखता, या फिर टाइम पे पेरेंट्स की बात मान ली होती, या कोई फ्रेंड से नाराज न हुआ होता। यानी कि बहुत सारे काश जो है हमारी लाइफ में जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ श्रोताओं बढ़ते हैं इस गीत की तरफ।

0: दोस्तों, जब हमारी जिंदगी में काश शब्द जुड़ जाता है ना, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन होता है कि आज जो हमारी लाइफ है, इससे इतर हम किसी दूसरे जीवन की कल्पना कर रहे थे कि हाँ, हमें ऐसा जीवन जीना था, या फिर लाइफ में ऐसी आज जो चीज़ें हैं, इससे अलग ऐसी चीज़ें होने चाहिए थी। काश शब्द हमारी जिंदगी में ये फीलिंग लेके आता है।
1: बिल्कुल, और इससे शायद ये भी लग रहा है कि जीवन में जो चल रहा है उससे हम खुश नहीं हैं, ये भी एक
0: बिल्कुल।
1: सवाल उठता है। तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं नूतन, जैसे कभी हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं, कभी हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में सिचुएशन ऐसी हो जाती है, तो ये काश शब्द जो है वो उससे जुड़ जाता है।
0: और ये जब काश शब्द आता है ना, तो क्या इसके कह देने भर से हमारी जिंदगी बदल जाती है?
1: बिल्कुल नहीं,
0: कतई नहीं बदलती है। और ये शब्द हमें कहीं ना कहीं हमारी बीती गलतियों का एहसास तो कराता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी सिखाता है कि आज जो समय हमारे पास है, वो सबसे ज्यादा कीमती है।
1: बिल्कुल, और उसी का उपयोग जो है हमें करना चाहिए।
0: और कहते भी हैं कि बीता हुआ जो समय है, वो लौट कर नहीं आता है, लेकिन आने वाला कल आज के फैसलों से ही बनता है।

दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमें एक और मौका मिल जाए तो हम पूरा जो है लाइफ का सीन ही चेंज कर दें, यानी कि सब कुछ बहुत बेहतर कर दें।

0: लेकिन जिंदगी में हर सुबह हमें एक नया मौका मिलता है, बस सिर्फ इतना है कि हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं।
1: बिल्कुल, लाइफ में बहुत सारे मौके मिलते हैं हमें, लेकिन उस मौके का फायदा उठाना आना चाहिए और तैयारी हमारी पूरी होनी चाहिए
0: बिल्कुल, और
1: ताकि
0: कहते भी
1: जो
0: हैं
1: मौका
0: कि
1: है
0: हाँ
1: उसका
0: हाँ
1: हम यूज कर सकें।
0: हाँ उस मौके को भुना सकें, कहने का
1: बिल्कुल
0: मतलब है। और कहते भी हैं कि वक्त रहते जो कदम बढ़ा लिए जाएं, वक्त रहते जो कदम बढ़ा लिए जाएं, तो जिंदगी में काश के मौके कम हो जाएं।

0: कहते हैं कि अगर खूबसूरत साथ हो आपके साथ तो सफर जो है खूबसूरत हो जाता है, क्यों नूतन?
1: बिल्कुल। और उस सफर को भी संभाल के रखना होता है, उस
0: बिल्कुल
1: साथी को भी संभाल के रखना होता है, नहीं तो फिर अगेन लाइफ में काश आ ही जाता है, उस शब्द की एंट्री हो ही जाती है, चाहे हम चाहें या फिर ना
0: ना
1: चाहें, वो
0: चाहे।
1: शब्द आ ही जाता है। तो ये जो मौका है उसको बिल्कुल भुनाना चाहिए, जो भी मौके मिले आपको। और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है किसी दोस्त से बात करनी है, तो दोस्तों आज ही जो है फ़ोन कर दीजिए। और आपको लगता है कि कोई सपना अधूरा रह गया है, तो उसको पूरा करने का जो सफ़र है उसकी शुरुआत आज से ही कर दीजिए। और लगे कि किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए, कोई गलती हो गई है, तो बस देर मत कीजिए और माफ़ी मांग लीजिए, इससे आप छोटे बिल्कुल नहीं हो जाएंगे। और हाँ, स्टूडेंट्स, अगर उनको लगता है कि आज से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, तो बस शुरू कर
0: कर देनी
1: दीजिए,
0: चाहिए,
1: ताकि
0: उसमें
1: बाद में
0: कंजूसी नहीं करनी चाहिए,
1: कंजूसी ना
0: क्योंकि फिर
1: करें।
0: आपको कहना पड़ेगा काश मैं पढ़ाई कर
1: हाँ,
0: लेता।
1: टाइम पे पढ़ाई कर लेता या
0: बिल्कुल
1: रिवाइज कर लेता, तो बस जो ये शब्द है काश, उसको कम से कम जिंदगी में आने दीजिए।

0: और दोस्तों, जिस तरह से आज जब हम आ रहे थे तो बादलों को देखकर मेरे मन में ये बात आई अनुतन, जैसे हम काश शब्द पे बात कर रहे हैं, तो उन बादलों को देख के मुझे ये लग रहा है कि काश आज तो बारिश हो जाए ताकि जो ये जोधपुर में जो गर्मी की तपिश है उससे हमें
1: हाँ
0: राहत मिल सके।
1: हाँ ये हॉट हॉट चीज से जो हमारी ये सन सिटी है, बस थोड़ा सा जो है सूर्यदेव का प्रकोप कम हो जाए।
0: बिल्कुल।

0: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। 9 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले होंगे।
1: हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर और बालोतरा में तैयारियों का जायजा लेंगे। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक साल में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आज नई दिल्ली में। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून पहुंचा, हाड़ौती क्षेत्र में बरसात का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से जोधपुर और बालोतरा प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर को जोधपुर पहुंचेंगे और जोधपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंचेंगे। श्री शर्मा रिफाइनरी का निरीक्षण कर एचपीसीएल के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन करेंगे। और ब्यौरा हमारे बालोतरा संवाददाता से।
2: पीएम के दौरे के दौरान करीब 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। पासधारी लोगों को ही रिफाइनरी के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पचपदरा से रिफाइनरी तक साइकिल से विशेष लोग भी पहुंचेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने 500 से अधिक साइकिलों की व्यवस्था की गई है। वहीं किसी भी वाहन को रिफाइनरी के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी आज पचपदरा आ रहे हैं। वे पीएम विजिट की तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं रिफाइनरी के पास एसपीसीएल के नवीन आउटलेट का शुभारंभ भी करेंगे। बंसीलाल, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना सहित विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं का कल लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। विभिन्न प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमत में 6.23% की बढ़ोतरी हुई है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा है कि जैविक खेती को अपनाने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और आने

0: वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कृषि व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कल जयपुर में सहकार सप्ताह के तहत आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री दक ने किसानों से जैविक खेती को बढ़ावा देने और अपने अनुभव अन्य किसानों के साथ साझा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए जिला सहकारी उपभोक्ता भंडारों और कॉनफेड के बिक्री केंद्रों का उपयोग किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ईबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए पूरी तरह से संपर्क रहित और कागज रहित स्वास्थ्य स्वघोषणा प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्री आगमन से 24 घंटे पहले तक अपनी स्वास्थ्य स्वघोषणा ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। राजस्थान पुलिस ने झूठी शिकायतें दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह करने और निर्दोष लोगों को फंसाने के मामलों में कार्रवाई करते हुए जून महीने में 75 लोगों को अदालत से सजा दिलवाई है। वहीं 1870 मामलों में न्यायालयों ने संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है। पुलिस की अपराध शाखा के अतिरिक्त महानिदेशक विपिन कुमार पांडेय ने बताया कि झूठी शिकायतों के मामलों में पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण अदालत में ये फैसले सुनाए जा रहे हैं। इस अवधि में नागौर जिले में सबसे ज्यादा 292 मामलों में न्यायालय ने संज्ञान लिया है, जबकि जयपुर ग्रामीण और अलवर दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए की गई सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह कार्यशाला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने का मंच प्रदान करेगा। बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही लाडो प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में सवाईमाधोपुर जिले ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अनिल कुमार जैमिनी ने बताया कि अप्रैल और मई 2026 के दौरान जिले की 1584 नवजात बालिकाओं के खातों में 39,60,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने बताया कि जिले ने योजना के तहत 98% से अधिक लक्ष्य हासिल किया है।
1: हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो डिलीवरी होती है, प्राइवेट जो हमसे जुड़े हुए हैं SGSY गंगापुर सिटी में, उनमें जो डिलीवरी होती है उसका हम पर डे एनालिसिस करते हैं, कितनी डिलीवरी हुई है, उसमें से कितनी बच्चियां पैदा हुई, कितनों का भुगतान हो गया, कितना नहीं हुआ है। वो डेटा हमारे पास किसी भी हॉस्पिटल का 5, 7, 10, 20 से ज्यादा का नहीं होता। मेजर जो गैप है हमारा दोनों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सवाईमाधोपुर गंगापुर सिटी इंदिरा है, भंडार है, जहां हमारी ज्यादा डिलीवरी होती है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल वहां से निकल गया। फिर हम उसका सब सेंटर वाइज बाइफरकेशन करते हैं, किस सब सेंटर की ये डिलीवरी है, दस्तावेजों के अभाव की वजह से किसी का भुगतान रुकता है तो वो दस्तावेज हम उपलब्ध कराते हैं।
0: प्रदेश के अधिकांश दक्षिण पूर्वी इलाके मॉनसून की बारिश से भीगे हैं। कल मॉनसून के प्रवेश के साथ ही चौमासे की बेहतर शुरुआत हुई। कई स्थानों पर झमाझम मेह बरसा। राजधानी जयपुर में रात भर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी है। डूंगरपुर में सुबह से ही बरसात हो रही है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़, गंगापुर, जहाजपुर और गुलापुरा क्षेत्र में झमाझम बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज 12 कोटा और झालावाड़ के लिए वर्षा का ऑरेंज अलर्ट बताया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मॉनसून के अगले दो दिनों में राज्य के कुछ और भागों में आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है।
2: आगामी 3-4 दिनों में राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने और राज्य के कई भागों में मानसून के प्रवेश करने तथा आगे बढ़ने

0: बरसने के लिए प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान उदयपुर कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। बाकी राज्य के ज्यादातर इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ कहीं कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की भी प्रबल संभावना बनी रही।
1: अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर और बालोतरा में तैयारियों का जायजा लेंगे। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक साल में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आज नई दिल्ली में। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून पहुंचा, हाड़ौती क्षेत्र में बरसात का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तो श्रोताओं, हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और अब जानते हैं कि इतिहास में 3 जुलाई यानी आज का दिन क्यों है खास। तो श्रोताओं, आज के दिन साल 1661 की अगर हम बात करें तो पुर्तगाल ने आज के दिन बॉम्बे यानी मुंबई को ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को उपहार के रूप में दिया था।
3: वहीं बात करें 3 जुलाई 1908 की तो ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था।
2: 1944 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क को नाजी कब्जे से मुक्त कराया गया था, जिसकी याद में आज बेलारूस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है।
3: जुलाई 1962 का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन श्रोताओं। अल्जीरिया ने फ्रांस से 132 वर्षों की गुलामी के बाद पूर्ण स्वतंत्रता हासिल की थी।
2: 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी आज ही के दिन।
3: बात करें 2000 की तो लाइसेरिया करासे फिजी के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे।
2: साल 2004 आज ही का दिन रूस की मारिया शारोपोवा महिला विंबलडन चैंपियन बनी थी।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज का दिन जो है वो स्पोर्ट्स के नजरिए से देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। 2005 में महेश भूपति और मैरी पियर्स ने विंबलडन टेनिस का मिश्रित युगल खिताब जीता था।
2: साल 2006 में कैरेबियाई द्वीप पर 35 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार जीत दर्ज की थी आज ही के दिन।

श्रोताओं, आज है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन हमारा सेगमेंट होता है शुक्रवार की किताब। और आज जिस किताब की हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उस किताब का टाइटल है देवी चौधरानी, जिसे लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जिनका जन्म 1838 में एक बंगाली परिवार में हुआ था और बंगाली भाषा के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि बंकिम चंद्र ने भारतीय मानवीय मूल्यों को विशिष्ट रूप से चित्रित किया है। ये इनकी खास बात है श्रोताओं। और इसी के साथ साथ धर्म, समाज, जाति और राजनीति के कई मुद्दों पर इन्होंने प्रकाश डाला है। खूबसूरती से रचित बंकिम चंद्र की रचनाएं उनकी रचनाओं के माध्यम से भारतीय मध्यम वर्ग की स्थितियों को दर्शाती है। इस तरह के क्लासिक्स ने भारतीय स्वतंत्र

0: तथा संग्राम के क्रांतिकारियों के लिए एक तरह से प्रेरणा का काम किया है श्रोताओं। और बात करें इस उपन्यास की, तो उपन्यास एक गरीब लड़की प्रफुल्ला की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी शादी एक बड़े ही खुशहाल परिवार में होती है श्रोताओं, लेकिन अपनी गरीबी के कारण उसे घर से निकाल दिया जाता है। कहानी आगे उसके जीवन के होने वाले विभिन्न संघर्षों को चित्रित करती है। कहानी अपनी मजबूत महिला भावनाओं और एक महिला की अखंडता की प्रामाणिक नक्काशी के लिए आज भी प्रसिद्ध है श्रोताओं।
1: बिल्कुल, जैसा कि नूतन ने बताया, ये कहानी जो है वो प्रफुल्ल नाम की एक गरीब लड़की की है और संघर्षों भरी उसकी ज़िंदगी होती है। और इस संघर्षों भरी ज़िंदगी में प्रफुल्ल की मुलाकात जो है भवानी पाठक नाम की एक साधु डाकू से होती है। वो उसे अपनी बेटी की तरह पालते हैं और उसे गणित, विज्ञान, साहित्य और युद्ध कला में शिक्षित करते हैं। और जब बड़ी होकर प्रफुल्ल देवी चौधरानी के नाम से जानी जाती है और वो अमीरों से धन लूटकर गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांटती हैं, और वो और उसके जो साथी होते हैं वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और अत्याचारी जमींदारों के खिलाफ लड़ते हैं। तो श्रोताओं, ये जो उपन्यास है वो देशभक्ति और अन्याय के खिलाफ जो है आवाज उठाना सिखाता है। उस समय के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने के कारण एक बार इसको प्रतिबंधित भी किया गया था, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद इस उपन्यास से जो है ये प्रतिबंध हटा भी लिया गया था। तो इस किताब का मुख्य उद्देश्य है लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और अपनी पारंपरिक भारतीय संस्कृति के रास्ते पर चलना सिखाना है।
0: तो उपन्यास से हमें यह पता चलता है श्रोताओं कि स्वतंत्रता संघर्ष को एक महिला जो नायिका है प्रफुल्ला, वो उसके नेतृत्व में देखा गया, और वह भी ऐसे समय में जब ज्यादातर महिलाएं पर्दे के पीछे रहती थी और अपने परिवार के बाहर पुरुषों को अपना चेहरा भी नहीं दिखाती थी। यह उन असंख्य महिलाओं के लिए एक महान प्रेरणा थी जो धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आई और आने वाले दशकों में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हुई थी।

0: तो श्रोताओं, अब कार्यक्रम में बात करते हैं काम की बात। तो काम की बात ये है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हड्डियों में प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है, और जब 40 की उम्र के बाद की बात की जाए तो हड्डियों में वीकनेस जो है एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आती है।
1: सोफिया, इससे पहले लोगों को एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी उम्र वाकई बढ़ रही है।
0: बिल्कुल, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में
1: हाँ,
0: जो कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है और बोन डेंसिटी घटने लगती है, तो खराब लाइफस्टाइल, विटामिन डी की कमी और गलत खान पान इस खतरे को और भी बढ़ा सकता है।
1: और इसके जो शुरुआती संकेतों की बात करें तो जैसे मामूली चोट से भी ज्यादा दर्द, छोटी चोट से फ्रैक्चर हो जाना, और सुबह के टाइम शरीर में जकड़न महसूस होना, दांत या नाखून कमजोर होना, ये सारे संकेत आपको मिलने लगते हैं श्रोताओं।
0: और इन लक्षणों का सही से अंदाज़ा नहीं लगाया जाता है अगर, तो इसके लिए आपको एक टेस्ट कराना ज़रूरी है, वो है BMD यानी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। आप करा सकते हैं, इसमें हड्डियों की डेंसिटी जो है वो मापी जाती है। इसके अलावा आप एक्सरे और टेस्ट भी टाइम पर आपको करवाते रहने चाहिए, उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोन हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है और उम्र बढ़ने के साथ साथ तो बहुत ज़रूरी है।
1: तो करना क्या होगा? सबसे पहले तो दोस्तों, जंक फूड को अवॉइड करना होगा पूरे तरीके से, और रोज सुबह 10-15 मिनट धूप

0: एक्सरसाइज तो जरूरी है ही, और हो जितना हो सके बैलेंस्ड डाइट लें, और आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो इसके लिए प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिशन आपके शरीर में जो है इनकी कमी ना हो इसके लिए दूध, दही, तिल, हरी सब्जियां और नट्स, सीड्स, दालें इनको ज़्यादा लें।
1: ताकि आपकी बोन हेल्थ सही रहे, अच्छी रहे, और ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तत्व हैं, आपके बोन हेल्थ को अच्छा रखेंगे और रिपेयर होने में भी मदद करेंगे।

0: श्रोताओं, आज है 3 जुलाई और आज की खास बात यह है कि आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। बिल्कुल, ये दिन जो है प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति शून्य सहनशीलता को बढ़ावा देने और प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने और खाद बनाने के महत्व को बढ़ाने के लिए समर्पित है।
1: और ये दिन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और ये बहुत ज़रूर भी है सोफिया, क्योंकि प्लास्टिक को विघटित होने में लगभग 500 साल तक का समय लग सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा समय होता है, प्रकृति के लिए बहुत हानिकारक भी होता है। और यदि ये रिसाइकिल नहीं होता है तो ये पारिस्थितिकी तंत्र को एक तरह से पूरी तरह बिगाड़ ही देता है।
0: बिल्कुल
1: और जब ये विघटित नहीं होता है तो मिट्टी और पानी में जमा हो जाते हैं प्लास्टिक के जो मटेरियल्स होते हैं, और प्लास्टिक से पारिस्थितिकी तंत्र और उसके साथ साथ जो समुद्री जीवन होता है, वहाँ जो जीव होते हैं उनको भी बड़ा नुकसान होता है, जो पृथ्वी की रिसाइकलिंग प्रक्रियाओं और जल मार्गों को बाधित कर रही होती है। और इस दिवस को ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक मूवमेंट के तहत लगभग 1500 संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है।
0: और इस दिन का उद्देश्य है लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग का उपयोग बंद करने के लिए जागरूक करना। तो श्रोताओं, आप सभी से हमारा ये निवेदन है कि हम सबको अगर पर्यावरण को है बचाना तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने के लिए ये दिन जो है उसकी जागरूकता के लिए जो दिन मनाया जा रहा है उसमें योगदान देना चाहिए और प्लास्टिक जो है उसको नो कहना चाहिए।
1: और सबसे बड़ी पहल ये हो सकती है कि जब भी शॉपिंग से के लिए निकलें घर से, तो अपने साथ में जो है वो कपड़े का बैग अपना लेकर जाएं,
0: बिल्कुल
1: डिपेंड ना रहें कि शॉपकीपर जो है हमें प्लास्टिक का बैग दे देगा।

0: श्रोताओं, आज जन्मदिन है मुत्तथु गोपाल कृष्णन उन्नीथन का। नाम भी कुछ यूनिक है ना श्रोताओं, इनका काम भी यूनिक है। ये पेशेवर रूप से अडूर गोपाल कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं और मलयालम सिनेमा में काम करने वाले एक भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता है। अपनी पहली ही मूवी स्वयंवरम, जो 1972 में रिलीज हुई थी, उसके साथ ही गोपाल कृष्णन ने 1970 के दशक के दौरान मलयालम सिनेमा में एक नई लहर का नेतृत्व किया श्रोताओं। और 5 दशकों से भी ज़्यादा के करियर में गोपाल कृष्णन ने 12 फिल्में बनाई। उनकी फिल्में अक्सर केरल के समाज और संस्कृति को दर्शाती है। उनकी लगभग सभी फिल्मों का प्रीमियर जो है वो वेनिस, कान और टोरंटो फिल्म समारोह में हुआ है, बड़ा ही हाईफाई तरीके से। और सत्यजीत रे और मृणाल सेन के साथ गोपाल कृष्णन विश्व सिनेमा में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त भारतीय फिल्म निर्देशकों में से एक जाने जाते हैं श्रोताओं।
1: और इसी के साथ अपनी फिल्मों के लिए गोपाल कृष्णा ने 16 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं, जो रे और सेन के बाद दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 17 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। उन्हें 1984 में पद्मश्री और 2006 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। और आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें 2004 में

0: दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया।
1: वही 2016 की बात करें तो 2016 में उन्हें जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो मलयालम सिनेमा में योगदान के लिए केरल सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। श्रोताओं,
0: और श्रोताओं, इसी के साथ उन्होंने 11 फिल्मों और कई वृत्तचित्रों के 35 मिमी प्रिंट भी उनके उपलब्ध
1: उपलब्ध
0: हैं।
1: हैं।

0: और श्रोताओं, प्रोग्राम में अब जयंती विशेष की बात करते हैं। तो आज जयंती के अवसर पर हम याद कर रहे हैं भारत की एक सुधारवादी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, नारीवादी और लेखिका हंसा जीवराज मेहता जी को। बिल्कुल, पत्रकारिता बात करें हंसा जी की, तो इन्होंने जो अपनी शिक्षा है वो बड़ौदा विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर भी रही, और उन्होंने शिक्षा जगत पर अपनी बेहतरीन छाप जो है वो छोड़ी थी। और स्वतंत्रता के बाद की अगर बात की जाए तो वो उन 15 महिलाओं में शामिल थी जो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा थी। वो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकारों पर उप समिति की भी सदस्य थी। उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए समानता और न्याय की वकालत की थी।
1: हंसा 1926 में बॉम्बे स्कूल कमेटी के लिए चुनी गई श्रोताओं और 1945 से 46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। हैदराबाद में आयोजित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने महिला अधिकारों का एक चार्टर प्रस्तावित किया था, जो कि बहुत अच्छा रहा श्रोताओं। बात करें 1947-48 की, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही। उनके अनुसार सभी पुरुषों को समान बनाया गया है, या ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, यानी कि जो कि अमेरिका की तत्कालीन फर्स्ट लेडी एलिनोर रूजवेल्ट का पसंदीदा वाक्यांश था। इसमें पुरुष शब्द को बदलकर मानव शब्द का उपयोग में लाने की कवायद की गई, जिसके बाद ये सभी मानवों को समान बनाया गया है इस वाक्य का उपयोग किया गया, यानी कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर क्रिएटेड इक्वल। पुरुष शब्द को हटाया गया और पुरुष और महिला के लिए एक शब्द मानव का उपयोग किया गया। इस वाक्य को जो काफी बढ़ावा मिला, और इससे वे साबित करना चाहती थी कि अधिकार केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी है श्रोताओं, क्योंकि वे भी उतनी ही मानव है जितने पुरुष। अंततः मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की भाषा में बदलने में वे सफल रही, और इससे लैंगिक समानता की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ा। हंसा बाद में 1950 में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष बनी। वे यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड की सदस्य भी थी श्रोताओं।
0: और इसी के साथ श्रोताओं, हम याद कर रहे हैं संस्कृत के विद्वान और दर्शन शास्त्री रामचंद्र दत्तादेय रानाडे को, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दर्शन विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर के पद पर भी रहे, और इसके बाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी बने। रानाडे जो हैं, उनके आध्यात्मिक विषयों पर शोध करना और उनके प्रचार प्रसार करने में उनकी बेहद रुचि थी। आपने सांगली में अध्यात्म विद्या मंदिर की भी स्थापना की थी।

0: और श्रोताओं, जयंती पुण्यतिथि विशेष पर आज हम याद कर रहे हैं जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान, जिन्होंने अपने करियर में 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था।
1: और जब उनका नाम सुनाई पड़ता है ना कानों में, तो जो मन है ना वो मतलब अपने आप से ऐसा लगता है नाचने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: और
0: और
1: कई फिल्मों में गानों में कोरियोग्राफर के तौर पर उन्होंने काम किया और क्षेत्र में उन्होंने बहुत सफलता हासिल की और 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें।
0: बात करें श्रोताओं, तो आखिरी बार करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के तले बनी फिल्म कलंक में तबाह हो गए गाने को उन्होंने कोरियोग्राफ किया था, और आज ही के दिन यानी 3 जुलाई 2020 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा।

0: और इसी के साथ श्रोताओं, आज याद कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के बेहतरीन अभिनेता राजकुमार को। नाम इनका था कुलभूषण, पर फिल्मी दुनिया में राज कपूर के नाम से फेमस रहे।
1: साल 1952 में आई फिल्म रंगीली में सबसे पहले बतौर अभिनेता राजकुमार को मौका मिला। इसके बाद दिल अपना, प्रीत पराई, घराना, गोदान जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए अभिनय की धाक जमाई उन्होंने।

और श्रोताओं, अब बात करते हैं फीफा विश्व कप 2026 की। तो बेल्जियम वर्सेस सेनेगल के मैच में बेल्जियम ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद धमाकेदार वापसी करते हुए सेनेगल को 3-2 से हराकर विश्व कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसी के साथ बात करें अमेरिका वर्सेस बोस्निया की, तो अमेरिका ने हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 के अंतिम 16 राउंड में प्रवेश कर लिया है।

0: और इसी के साथ श्रोताओं, आज के नमस्कार कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं रही आपके साथ सूफिया खान,
1: और इसके साथ न्यू न्यू नूतन सोनी।
0: तो दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मोतीलाल सारस्वत को।

अभी आपने सुना लोक संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में सबसे पहले सुनिए आबिदा परवीन को।

केसरिया बालम पधारो मारे देश, राजस्थान की जबान है ये। केसरिया महबूब से मुखातिब है।

सूरज से मिनट समाज होने के सूरज तुम्हें मैं पूजूंगी, भर मोतीनारो थाल, मोतियों का थाल भर के मैं पूजूंगी, इसलिए

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम व्यू 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 11 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का आगाज किया है हमने रंग फिल्म से। इस गीत में आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू और पी सुनंदा की। इस गीत को लिखा है समीर और सुरेंद्र साथी ने। संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, सूर्य नगरी चैनल पर अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये सफर आज आप तय कर रहे हैं जयश्री के साथ। श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं हम 20 साल बाद फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आओ प्यार करे, फिल्म से सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत जिसे गाया था कुमार सानू ने, लिखा था श्यामराज ने और संगीत से सजाया था आदेश श्रीवास्तव ने।

आइए श्रोताओं, फिल्म संगीत में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है आर डी वर्मन ने। फिल्म का नाम है सागर।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में अब आप सुन रहे हैं बरसात फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में अब आप सुन रहे हैं बरसात फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

0: श्रोता, हम फिल्म संगीत में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं फिल्म संगीत में ये अगला गीत साजन फिल्म से, जिसे गाया है एसपी बाला सुब्रमण्यम ने, लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, साजन फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म पत्थर के फूल से ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने, लिखा है रविंद्र रावल ने और संगीत से सजाया है राम लक्ष्मण ने।

झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में अभी आपने सुना मोहब्बते फिल्म से ये गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर और साथियों ने, लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था जतिन ललित ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की आखिरी में हम आपको सुनवा रहे हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत में ये पहली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं कविता शर्मा की आवाज़ में।

श्रोताओं, लोक संगीत में अभी आपने सुना कालूराम प्रजापति की आवाज़ को, आइए अब आपको सुनवाते हैं मोती खान की रचना को।

अभी आप सुन रहे थे विविध लोक कलाकारों को कार्यक्रम लोक संगीत में। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में ये पहली रचना चंदन दास की आवाज़ में।

ये इश्क की आग है, प्रेम की अग्नि, लव एट फर्स्ट साइट, उसके बाद साइट ढूंढते रहो।

आखिरी उम्र तक बुझती नहीं। हमारे एक बुजुर्ग दोस्त हैं, शायर हैं, उन्होंने एक शेर कहा है।

0: के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए रिफाइनरी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी आज जोधपुर और बालोतरा के प्रवास पर रहेंगे। श्री शर्मा पचपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण कर HPCL के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल सुबह जोधपुर में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कर संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे पचपदरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे तथा जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देश की पहली ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगे। माय भारत के लिए उद्योग संघ सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि उद्योग और माय भारत के बीच सहयोग से युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने में मदद मिलेगी। युवा मामलों के विभाग की ओर से हुए इस सम्मेलन का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत पारिस्थितिकी तंत्र से परिचित कराना था, साथ ही उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना रहा। कार्यक्रम में एसोचैम, फिक्की, CAIT और CII सहित प्रमुख उद्योग निकायों ने भाग लिया। प्रदेश में राजस्थान समान नागरिक संहिता UCC 2026 के संबंध में संभाग स्तरीय जनसुनवाई की जा रही है। इस दौरान आम नागरिकों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हनुमानगढ़ में प्रारूप समिति के सदस्य डॉ शुचि चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीकानेर संभाग की जनसुनवाई की। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए। बैठक में प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर आमजन से भी निर्धारित पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की गई। इधर जयपुर कलेक्ट्रेट में 10 और 11 जुलाई को जयपुर संभाग स्तरीय जनसुनवाई होगी। राज्य के पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 8 सेंटीमीटर पानी जयपुर के सांभर में बरसा, वहीं पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। इस दौरान तेज झोंकेदार हवाएं चली। विभाग ने अगले 4 दिनों में पूरे प्रदेश में मानसून के छाने की संभावना जताई है। जैसलमेर को छोड़कर समूचे प्रदेश के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बारिश से अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के लिए अभ्यर्थी आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 607 पदों के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा का इस साल 6 दिसंबर को होगी और मुख्य परीक्षा का आयोजन अगले साल 1 और 2 मई को प्रस्तावित है। इसमें राज्य सेवा के 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 पद शामिल हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर। पेश है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: चंदन दास की इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। दिन के 1 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल प्रस्तावित राजस्थान दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा आज जोधपुर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा, यातायात प्रोटोकॉल, हेलीपैड, सभास्थल तथा अन्य व्यवस्थाओं

किसान भाया अबार जी को भगत है, वो है बारिश रो। कई किसान भाई आपरे खरीफ री फसला भी आपरे बाई है, कई आपरे बार रिया है। आज आपने जानकारी दी रहा के भाई बरसात रे मौसम रे महीने आपा किसी किसी जी की सब्जियां है वे आपा उगा सका। जी हम बात आवे के भाई जी हमें अपने मानसून रो टाइम रहे, इन भगत जी को तापमान है वो थोड़ो कम रहे और साथ जी को आद्र परिस्थितियां है ए बढ़िया रहे, और बारिश रे मौसम रे महीने बीजरो जी को अंकुरण जी की प्रक्रिया है वह थोड़ी बेगी हुए, पौधारी जी की ग्रोथ है वह तेजी से आप बढ़े। कई भाईसान गर्रा आड़ा पाड़े जी का बाड़ा है या कटी पलोट छोड़ा है वो आपने होम गार्डन में सब्जियां बावे है उठे बीज सु सब्जियां बहुत ही आसान तरीके से उग सके, और कई किसान भाई आपने व्यावसायिक तौर माते भी सब्जियां रो उत्पादन लेनी चाहे है। जो मैं बात करा के भाई मेरो टेम है इन बरसात रे मौसम रे महीने जो आप बात करा क्या भाई टमाटर आप बा सका, खीरो है, बैंगन है, कद्दू है, लौकी है, हरी मिर्च है, पालक है, भिंडी है, करेला है, सेम है, ए सगले तरह जी की सब्जियां है ए आप हमारे बगत रे महीने आप उगा सका। जो मैं बात करा कई किसान भाई आप रे टमाटर की खेती करनी चाहे है तो सब बढ़िया सगला सु पहली बात तो आ है के भाई बीज आप रे लेवे और टमाटरों बीज 1.4 इंच जी की गहराई है इन महीने आप लगा ला और खाद बीज भी देवा पानी भी आप पिलावा तो 7 ले 14 दिनारो जी को टेम है वो आप उगण में लाग जाए करे। बीजरे अंकुरण रे वास्ते जी को तापमान है वो 18 ले 27 डिग्री सेंटीग्रेड रे बीच रे महीने होया करे। टमाटर पौधा ने एक दूजे लंगे टंगे 7 ले 10 इंच दूरी माते आपने लगाना चाहिए ताकि पौधा रो जी को फैलाव बढ़िया वे पर्याप्त जी की जगह है वह भी आपने मिल सके, और वो पूजा और उन बाद महीने आप कई करा के मोटे स्तर माते जटे भी आपने क्यारिया है या खोडा है वोटे रोप आप तैयार हो जा उन वक्त बाद महीने आप फाचा इन रोप ने लगा दा तो बेगो आप बरसात रे मौसम में महीने आप पकड़ कर ले और 60 70 दिन बाद महीने आपने टमाटर जी को है वो बढ़िया लाग जा और तोड़ पुरो ना बाजार महीने भी बेच सका। और टेमो टेम अपने खाद है उर्वरक है ये भी आपने देवना पड़े साथ सिंचाई जी की बात है तो बरसात रे मौसम में महीने थोड़ी सिंचाई अपने कम करनी पड़े। हमें जो कई किसान भाई आप रे बैंगन जिन्हें आप रींगना का ए भी आप बा सका बरसात रे मौसम रे महीने बहुत ही आसानी हूँ हमें अपन जो बात करा आपने उग जा घर आड़े पाड़े भी आप लगा सका। कई जिका भाई सैन है वे आप रे गमला रे महीने भी बैंगन लगा दे, गमला रे महीने जो बात करा टमाटर आप रे लगा दे, बैंगन रो बीज भी 1.4 इंच गहराई माते आप जमीन में रखा पौधा मोटा हो जा बाद में तो बढ़िया आप फाचो उकाड़ पर दूजी ठोड़ आपने लगाना पड़े जिन्हें आप ट्रांसप्लांट क्या एक ठोड़ दूजी जगह आप लगा और रोप हुआ करे जो मिर्ची है टमाटर है बैंगन है। किसान भाई लघु योग कार्य जी को है आप जो रात दिन सब्जी पैदावार लेवे किसान भाई ने इन बात की जानकारी है। और बैंगन रे बीज रे अंकुरण रे वास्ते जी को तावड़ो है तापमान जिन्हें आप कहवा वो 21 ले 32 डिग्री सेंटीग्रेड रे बीच रे महीने होना चाहिए और टाइम टाइम पानी की व्यवस्था है खाद बीज आप देवे और बाद महीने मोटे स्तर माते आप रोप बापरा और व्यावसायिक तौर माते बैंगन रो जी को उत्पादन है वो आप ले सका। इन्हीं तरह बात करा आप खीरा काकड़ी है ए भी आप ले सका और बीज रे अंकुरण वास्ते जो बात करा 18 ले 32 डिग्री सेंटीग्रेड रो जी को तापमान है और खीरा रे महीने होना चाहिए और बाद महीने बढ़िया आप 7 ले 14 दिन बाद महीने जी को बीज है आप अंकुरित हो जा और बढ़िया तरी हूँ आपा पौधारी जी की है देखभाल करा बिलड़िया बढ़िया आप लागे और बढ़िया फूल आवे उन बाद महीने जी का खीरा है आप लागे और 50 ले 70 दिन महीने जी का खीरा है आप लागना हरू हो जा। और बिलड़िया जी की है खास बात है कोई लकड़ी है या

क्रीपर नेट है वीणु आपने सारो देवनो चीज है जदीज है जी की बेला है फैले और बढ़िया जी का खीरा आपने ला क्या करे। एनी तरह कई किसान भाई जी लौकी री बात करा एंड्री पैदावार भी हमें बरसात रे मौसम रे महीने ले सके और लौकी रो बीज अपा लंगे टंगे चारू पांच फीट दूरी माते लगानो चीजे क्योंकि लौकी जी की है फैले गणी और साथ तावड़ो जी को है वो हमार बात करा 20 ले 32 डिग्री सेंटीग्रेड रे बीच में होना चाहिए और लौकी रो बीज आप एक बार छोप दियो तो उन बाद मैंने एक दो ही हफ्ता मैंने बढ़िया आप अंकुरित हो जा और टेमो टेम आप देखभाल करा बहुत ही तेज गति में वो बढ़िया करे स्वास्थ्य वास्ते भी बहुत लाभदायक हुआ करे। कई लोग लौकी रो जी को जूस है वो पीवे है बेलड़िया जी क्या है इन्हें सारो देवनी आपने बहुत जरूरत हो जाए करे नहीं तो कहीं वे जमी माते पूरी वे फैल जा पग भी माते मिली जे कोनी और कटे कटे लौकियां लागे पत्ता रे बीच में छिप जाए करे तो जरूरत इन बात री है कि भाई लौकी आपा बावा तो बेला ने सारो देवनो बहुत जरूरी हो जाया करे। कुल मिलान बात आ है कि भाई क्रीपर नेट रो जो इस्तेमाल है वो आपने करना पड़े नियमित रूप में आप लौकी रे मैंने खाद देवा पानी की जरूरत है तो पानी भी देवा तो लंगे टंगे 50 ले 60 दिन बाद मैंने बढ़िया आप रे लौकी स्वादिष्ट तैयार हो जा और किसान भाई बाजार में जाना आप रे बेच सके। इन रहते आते कई भाई सेण आप रे घर रे महीने गमला रे महीने भी लौकी जी की है आप रे बा सके। हमें बरसात रे मौसम रे महीने जी आप बात करा के भाई पालको है इन्हें भी आप बा सका क्योंकि पालक जी को है बहुत ही बढ़िया लागिया करे बरसात रे मौसम रे महीने और पालक रा जी का बीज है बढ़िया आप मिट्टी रे महीने डाला और जल निकास वाली मिट्टी जी की है आ होनी बहुत जरूरी है। एक दो सप्ताह महीने जी का बीज है आपने उगना हर रोजा और तापमान जी को है पालक रे वास्ते वो 15 डिग्री से ले 24 डिग्री सेंटीग्रेड बीच रे महीने होना चाहिए। पालक रे जी को बीज है बहुत तेज गति में अंकुरित हुआ करे और साथ साथ बरसात रो जी को मौसम वे तो आप थोड़ा ध्यान भी रखा और 50 ले 60 दिन महीने बढ़िया ताजा कोमल पत्तेदार पालक जी का अपन देखने मिल जा और आपरे किसान भाई ऊपर ऊपर बाढ़ बोकरे और आपरे मार्केट रे महीने जी को भी नजदीक रो मार्केट है उठ ले जाना बेच सके। इन रहा था किसान भाई आप में जो बरसात रो मौसम है तो जी की हरी मिर्च है वे भी आप बा सका बढ़िया इंडो उत्पादन भी आप मोटे स्तर में लेवा तो पहला मिर्चा रे वास्ते आपने रूप तैयार करना पड़े। कई किसान भाई तो पहले रूप तैयार कर लियो और वे हमें जी का है बढ़िया खोडा बना परान बढ़िया खोडा मैंने आपरे कई ओदा देवे और बढ़िया आपरे फुट डेढ़ फुट क्षेत्र रे माते आपने बढ़िया जी को रूप है वो आपरे छोबे और बाद रे मैंने पानी की जरूरत वे तो आप सिंचाई भी कर दे और बरसात वे तो आप ही पानी मिल जा और क्षेत्रीय राखनी वास्ते जरूरी है कि भाई मिर्च जी को पौधो है बढ़िया फैलाव ले बढ़िया फूल भी आवे और मिर्चा भी बढ़िया लागे। जिन वक्त आप मिर्चा री तोड़ाई करा तो भी कोई समस्या नहीं आवे सा थोड़ी क्षेत्रीय राखनी अपने बहुत जरूरी है। इन तरह आने वाला टाइम रे मैंने जो मिर्च रो जो उत्पादन है वो भी जो किसान भाई मिर्ची बावनी चावे बा सके। किसान भैया आ ही जानकारी के भाई बरसात रे मौसम रे मैंने आप किसी किसी जी की सब्जियां है वे आप उगा सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूर्व वेरियो है आपरे साथी दिनेश राणे जाने सीख दिराओ राम राम।

हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है अब हमारी सखियों के लिए कार्यक्रम गणगौर।

0: जीव तिसाया जावता जोड़ा हुया अधीर, डाल डाल हिवड़ो हुयो चाली चीरम चीर।
1: गणगौर कार्यक्रम सुनने वाली सगली सखियारो स्वागत है आपरे मनमोहने कार्यक्रम गणगौर रे महीने। और आज आपरे साथे है आपरी दो सखियां पूनम देवड़ा और
0: ममता राजपुरोहित।
1: तो स्वीकार करो माणा हेत प्रीत सुभर्योड़ा।
0: राम राम, राम, राम, राम। सुरा रिजत बात करा तो सुरीलो राजस्थान, घबा रिजत बात करा तो रंग रंगीलो राजस्थान, खेत खलिहान रिजत बात करा तो हरियाणो राजस्थान, अर मिनखा रिजत बात करा तो छैल छबीलो राजस्थान। ओही तो है अपनो राजस्थान अलबेलो राजस्थान, तो अलबेले राजस्थान री अलबेली मायड़ भाषा सु सजोड़ा इन हथई इन कार्यक्रम गणगौर रे मायने सगली हेतल सख्यारो घणे मान स्वागत। चालो शुरुआत करा इन मनमोणे कार्यक्रमों री एक मीठे से गीत सु।

0: बिल्कुल ममता जी, अबे तो राम जी आई विनती है कि बस अबे गर्मी बहुत होगी, अबे तो बस जल्दी सुबरसात करा दो ताकि
1: मैं
0: थोड़े
1: होवे
0: से
1: तो सगला ही जीव सुरा हो जावे।
0: हाँ, क्योंकि मिनक कई जीव जंतु पेड़ पौधा सब गर्मी में तपरिया है और
1: बिल्कुल
0: सब ना बारिश री बूंदा पड़न इंतजार है, सब बाढ़ जो रहे कि कदे बारिश होवे, पर पहली बरसात जब ओला नहीं तो थोड़ी सी गर्मी और ज्यादा बढ़ जाए
1: उमस बढ़ेला।
0: क्योंकि
1: और यूं देखो
0: तपती
1: आज उमस
0: धरती,
1: है भी, है
0: हाँ
1: नी।
0: बहुत ज्यादा उमस है।
1: हाँ
0: और
1: और
0: पेड़ पौधा वास्ते तो बारिश अपन जाने ही है कि अमृत समान हो, इन मौसम में पेड़ पौधा ने जब बारिश रो पानी मिल जावे तो वे जल्दी सु जड़ा पकड़ लिया करे और बढ़ जाया करे।
1: बिल्कुल
0: और पेड़ पौधा रे पर बात कर रहे हैं तो अपा मना रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह,
1: बिल्कुल
0: तो वन महोत्सव सप्ताह मनाने रो उद्देश्य यही है कि इन महीना रे महीना आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाओ ताकि हरियाली है जी को बढ़े।
1: और कारण है कि देखो आषाढ़ महीनो है, यूं देखता जाओ तो अगर इतक मास नहीं आता तो और
0: सावन
1: सावन
0: आ
1: चाल
0: जाता।
1: तो, पर आषाढ़ है और मेघ छाट आवनो टाइम तो हो ही गयो है। पर हाल ही देखो कि मेघ राजा मेहरबान होया को नहीं, हो जावे तो आजकल में लाग तो रियो है उड़ीक देखता लोगों ने कि हाँ उमस और छाटा हो रहा है, कटी कटी थोड़ा बहुत होया भी है और हो जावे तो और बढ़िया है। और वन महोत्सव भी इन टैमर माने इन खातर ही मनाया करे कि जो आपा छोटा छोटा पौधा या बीज आप लगाओ धरती माने तो पे छाट पड़ना बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह उगेला, और जो अपना वन है बिहार मायने सुधारो वेला। इन्हें अलावा आप एक दिन और मना रहे हो पूनम जी आज, क्लीन बीचेस वीक।
0: बिल्कुल, अभी हर साल 1 जुलाई तक मनाए जावे और इन्हें समुद्र तट रो अर्थ डे भी कहे जाए करे। इन दिनों मकसद हो ये कि तटीय क्षेत्र में जो भी मतलब जो भी समुद्र है वह साफ रखना, प्लास्टिक और कचरे से समुद्री जीवारी रक्षा करनी और आम जनता ने समुद्री प्रदूषण के बारे में इन्हें शिक्षित करना।
1: इन अवसर पर देखो कि जो अलग अलग एनजीओज वे नी वे कई तरह री जो अभियान है या मुहिम है वे चलाया करे, तो इन मुहिम रे मायने भी आपा अगर कोई समुद्र तट रे नेड़े लोग रहवे दिया है तो इन मुहिम में जुड़ आप रो योगदान दे सके, या पच आप यूं भी कर सको। देखो कई एड़ा स्थानीय संगठन है या कई सफाई अभियान एड़ा चाल दिया है जकर माने आप रो कोई छोटो मोटो काम काज करना आपरे तरफ कहीं कर सको हो प्रकृति रे वास्ते वातावरण रे वास्ते। कुछ भी नहीं होवे या आपा उन जगह नहीं रहता हो कि जटे समुद्र तट है तो और जरूर ध्यान रखना है, एक बात और संकल्प लेवनो है कि अगर आपा भविष्य मायने कठे समुद्र तट पर जाओ तो बिना कारण रो जो कचरो आपे फैला रिया हो बिना खातर एक जागरूकता होनी चाहिए, और जो करे ब्याने भी रोको और आपाने भी नहीं करना है। आड़ पाड़े कोई कोई आपाने एड़ो डब्बो या कोई कचरे थेलो या पेटी मिली जावे कि जठे आपा इन तरह कचरे ने डाल सको, या आपनी फर्ज भी है और आपनी जिम्मेदारी भी है और देखो तो जरूरत भी है पूनम जी।
0: बिल्कुल सही किया ममता जी। और वो जरूरी नहीं है कि आपा देखा कि भाई मैं तो कोनी फेंकी वटे कचरे तो मैं क्यों उठाऊं, एक आम जिम्मेदार नागरिक बनते हुए आपने वटे जो भी कचरो दिख रहे हो तो अगर कूड़ेदान पड़ी हो तो वटे आप कूड़ेदान में डाल दो, और आप भी घूमन जा रहे हो तो एक एड़ी थैली या एड़ो कोई बैग ले जाओ जिनमें आप जो भी आप सामान ले जा रहे हो जो फेंकन लाए गए तो वो
1: बिल्कुल
0: उन थैली में डालना, आप साथ ले आओ और एक निश्चित जगह माता आप उन्हें डाल सको।
1: और एक साधारण सभ्य नागरिक के जो निशानी है नी आ सब पहली निशानी आई जाए कि अनावश्यक कोई भी तरह रो कचरो आपा जठे भी जा रहे हो उठे नहीं फैलाऊं।

0: तो ममता जी जब भी समुद्र रे किनारे, नदी रे किनारे, तालाब रे किनारे जावा तो ठंडी ठंडी हवा रा जी का लहरा रे साथे झोंका आवे नी, कितो ठंडक रो एहसास देवे।
1: और जो गीत बाजियो नी यू लागे जणा आपे समुद्र रे कोई लहरा ले रिया।
0: बिल्कुल, पर लहरा तो बार दो दिन होया हवा भी बंद हो चुकी,
1: बंद होगी
0: क्योंकि हवा बंद हो जदी तो बरसात रे अनुकूल परिस्थितियां बाणी अपने। और हमारी बात करानी तो इतना दिन तो इतनी हवा चलती है कि हमारे साथे साथे प्लास्टिक री जी की थैलियां है वे हवा में लहराती लहराती घर
1: घर मायने
0: उड़ना आ जाती। कटी सड़क रे किनारे, कटी पानी में देखो तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर
1: आता।
0: बिल्कुल सही कियो। और यू देखा नहीं तो किनी किनी तरह हल्की फुल्की जी की थैलियां नी अपन रोजमर्रा री जिंदगी रो एक हिस्सो बन गई है।
1: बिल्कुल,
0: अपा देखा तो ज्यादातर घर मायने कटी कटी प्लास्टिक री थैलियां रो एक गुप्त भंडार है जिको छुपेड़ो है।
1: बिल्कुल है,
0: पर कभी अपा और नहीं सोचियो को कितनी नुकसानदायक है थैलियां।
1: बिल्कुल, क्योंकि देखो आज आप जो सुविधा रे नाम माते काम में लेवो हो इन चीज ने छोटी सी लागे और खूब सुविधाजनक लागे, पर इना जो बाद रा जितना भी कह नहीं कि आफत या परेशानी रे रूप में जो अपने सामने रिजल्ट आ रहा है बे ऐडा है कि आपरो नाकेड़ो कचरो कई सालों तक धरती रे गर्भ हूँ मिट तो नहीं है, बिनो कोई तरह रो निकाल नहीं हो पातो है। तो आपरी कोशिश आ रहनी चाहिए कि कमो कम इस्तेमाल करो और अगर हो सके तो पुरानी जो अपनी संस्कृति है थी पूनम जी बिना तरफ एक बार नजर करो तो अपने ध्यान पड़े कि आज जो दुनिया नवा नवा उपाय ढूंढ रही है नी वह तो आप काम में लेर छोड़ भी चुके हैं।
0: बिल्कुल,
1: चाहे देखो कि कपड़ा रो

0: थेलो है तो, या पचे कोई पानी री मशक है ती, या कोई भी अड़ी चीज जो लंबे टाइम तक आपे काम में ले सकता और बिना हाथों हाथ फेंकनी नहीं पड़ती।
1: मतलब कहने का मतलब है कि पहले बिना प्लास्टिक रे भी जीवन हल तो, प्लास्टिक रे जरूरत ही को नहीं रहती।
0: आपने याद है पूनम जी कि कदी बड़े सफर में आपे जाता नहीं तो साथ एक लोटो या गिलास रखता, कि अगर किनी नहीं है अड़ी हरदा के आप सुराही या मशक या नहीं है कि नहीं खने, तो जटे भी कोई 2, 4, 5, 10 किलोमीटर अंतर में कोई नल लाद तो नहीं, उठो वो लोटो गिलास भर पानी पी लेता।
1: बिल्कुल सही किया। और आप आज प्लास्टिक की बात इन वास्ते कर रहे हैं क्योंकि आज है अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, और इनकी शुरुआत एकल उपयोग वाला जिका प्लास्टिक बैग है विना ने समाप्त करने वैश्विक अभियान के रूप में हुई है। और दिन प्लास्टिक के पर्यावरण प्रभाव ने मतलब कम करने वास्ते और इन जो विकल्प है उनकी तरफ बढ़ने के वास्ते जिको मनाया जावे, और दिन साल रे मध्य में आवे जो अपने याद दिलावे कि पर्यावरण संरक्षण के वास्ते प्रयास केवल पृथ्वी दिवस तक ही सीमित को नहीं है, और भारत रे मायने विशेष रूप से मानसून चरम पर होया करे इन टाइम
0: जी,
1: और इनके कारण जिका प्लास्टिक बैग हुए वे मोटी समस्या बन जाए क्योंकि नदियां रे मायने या जो भी है वे प्लास्टिक हुए जिको पानी ने अवरुद्ध कर देवे तो बाढ़ रहा है जिको आसार ज्यादा बढ़ जाया करे, तो कठिन कटे वो बहुत ही नुकसानदायक है अपन वास्ते। और अगर आप स्वच्छ महासागर, स्वस्थ वन्य जीव और एक रहने योग्य भविष्य चाहवा तो इन विषय पर अपने गंभीर रूप से चिंतन करना जरूरी है।
0: जी बिल्कुल, आप पूनम जी बिल्कुल सही बात करिए कि अपना जो जल है, जंगल है, जमीन और जीव जंतु है बिहार वास्ते आप खूब बड़ी समस्या बनर सामने आ रही है। और कई बार देखो कि जो गाय ढांडा है नहीं, अभी कई बार कचरे में फेंकड़ी जो थैलिया है बियान खान बीमार हो जावे और कई बार तो ऑपरेशन भी नौ बतावे है।
1: बिल्कुल,
0: तो एक सलाह एड़ी है, आज क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है तो याद करो कि पुराने टाइम रमायने आपने घर री जो खूंटिया है बटे रंग रंगीला झालरीदार थैला लटक्योड़ा रहता, तो हो सके तो बिन आदत ने फिर से वहां पर काम में ले आओ।

0: असाढ़ी पूनो दीना गाज बिजू बरसंत नासे लच्छन काल रा आनंद मानो सत। मतलब के असाढ़ी पूनम ने अगर बादल गरजे, बिजली चमके और पानी वरसे तो अकाल रा जो लक्षण है वे मिट जाया करे और पैदावार अच्छी होवे। पर देखो के बार रा है जो संकेत है वे आपने मिल नहीं रिया है। हाल तक यहाँ पर जो मेघ राजा है वे मेहरबान होया कोनी, पर अषाढ़ जो महीनो है नी पूनम जी, वे आपने पुराने टाइम रे माने देखो आपरा जो दादी सा है या नानी सा है था, वे कई तरह की ऐसी चीजों करता जो हर एक महीना ने अलग बतावती कि इन महीना में यूं ब्याह करे, उन महीना में यूं ब्याह करे।
1: एडी महीना रो अपने आप में अलग ही महत्व हो तो और भी ना जुड़े रीति रिवाज भी होता।
0: बिल्कुल, तो ऐडा ही कुछ एक रिवाज है या कुछ एक संस्कृति है अपनी सभ्यता है। बिने बारे में आप बात करा तो गर्मी और वर्षा ऋतु रे बीच रो जो काल है संधि काल अषाढ़ महीनो, इन मायने जो अपने पुराने टाइम रे बात करो राजस्थान मायने तो जब मेरो आगमन रो महीनो मनीजे है इन टाइम में खेतर मायने देखो तैयारी पहले करी थी कि भाई छांटा आई तो पहले आप जो हल सब हल जो तैयार करना है या साफ सफाई करनी है खेत री झाड़ जंकर जो उग गया है बियाने हटावना है वो आप कर रखता और फिर बान छांटा हूं एका छाट पड़ती खेत बावता या हल चलावता बादल री उड़ी गर प्रकृति रो जो बदलाव है और लोक गीतर माने भी रिवाज और माने भी अपने साफ नजर आओ तो अषाढ़ू जुड़े कुछ एक गीत भी है। खेतरी तो बात आप कर ही ली है, कुछ गीतारी बात करो तो कुछ एक गीत है जो इन मिनर मायने खास गविस्ता जहाँ की पीपली गीत जो कि शेखावटी रमायने और मारवाड़ रमायने गविजे चौमासो गीत कजली गीत और जो भादवेरो स्वागत है वो इन गीत रमायने आप देख सको हो तो पणिहारी गीत भी एक खूब चावो गीत है जो कि अषाढ़ रमायने लोग गाया करता। तो प्रकृति रो जो बदलाव है वो इन गीता रमायने अपनी जो संस्कृति है वह इन गीता रमायने झलकती। खेतों की तैयारी होवे या एक गीत होवे ये अपनी सभ्यता है संस्कृति है।
1: बिल्कुल, और इन्हीं महीनों चौमासा की शुरुआत भी होवे तो कई अपने जो दादी नानी है वे चौमासो राखे और देखो टाइम माते खानो खानो टाइम माते उठनो बैठनो सोनो और इन महीना में कई तीज त्योहार भी आवे तो दान पुण्य भी करे है वे जुड़ियोड़ा तो अपनी जो भी रीति रिवाज है अपनी दादी नानी अच्छी तरीका निभावे हर महीना रा।
0: बिल्कुल, इन मायने

0: तरह देखो आप जब त्यौहार की बात करिए तो भडला नोम जो कहवा व्या भी आवे है, गुप्त नौरता आवे, रथ यात्रा भी इन महीना में आवे, देवशयनी एकादशी आवेला के जिन बाद में जो भी शुभ काम हो वे सगड़ा ही एक बार रुक जावे
1: और चौमासो लाग जाए।
0: हाँ चौमासो लागे और चौमासो आप ही एक बड़े त्यौहार रूप में मनीजे है अबे तो के जितना भी व्रत त्योहार दान पुण्य धर्म जो है वे काम इन महीना मैंने लोग खूब करिया करे तो महिमा खूब है अषाढ़ महीने री। और एक और चीजें जो होया करे कि आपारा जो पुराने टाइम री जो पानी रो स्रोत है बियारी साफ सफाई भी आप इन टाइम में करिया करता पहले
1: कुआ नदिया तालाब टाका जितना भी है क्योंकि बरसात रो पानी आवेला तो वे पाछा बढ़ी जला तो एक बार वे जो भी कूड़ो कचरो है निकालने वाणी साफ सफाई हो जावे
0: ताकि पीवन जो पानी
1: बर सके वे अंदर। और एक और काम करिया करा एक बनाया करा सीड बॉल यानी बीज रा लाडू। इन मौसम में अगर आप सीड बॉल बनाने अटी उटी डाल दा तो हरियाली एजी को चारू मेर खिलन लाग जाए।
0: बिल्कुल।
1: और बनाना भी बहुत आसान है। इन वास्ते आपने की नहीं करना है, काली मिट्टी है चिकनी मिट्टी लेनी है और खाद लेनी है और उन महीने जो भी आपका स्थानीय पेड़ पौधा रा बीज है जान खेजड़ी होगी रोइड होगी और नीम है देसी बबूल है ले सको। एक कुंडा या परात्र में इन्हें मिट्टी और खाद ने चौकी तरह मिला लो और मिश्रण में थोड़ा थोड़ा पानी डाल ले एकदम आटो जान गूंथ लो।
0: बिल्कुल।
1: पच उन्हें छोटा छोटा नींबू जड़ा लाडू बना उन बीज महीने के बीज दबा दो। बीज दबाने पाचे वाणी गोल गोल कर लो और जटे भी आपने मतलब लागे के अठे सुखा सका छिया रे महीने बट आप छाया में सुखाओ धूप में सुखाए तो वे तिड़ जावेला। दो तीन दिन तक वे बढ़िया सूख जावे। पचे जो भी गोचर भूमि है खेत रे किनारे है सड़क रे किनारे है गांव रे किनारे किनारे है बट आप वे बोल जिका बीज रे लाडू बनाए वे डाल दो और जब भी बरसात आवेला तो विंड महीनू बीज अंकुरित होने पौधो बन जावेला।
0: खूब बढ़िया बात है। और देखो कि छोटो सो प्रयास है छोटी सी कोशिश है इनमाने घणो अपने कहने के कोई काम भी इतना बड़ो करना नहीं है तो बिल्कुल एड़ा छोटा छोटा प्रयास अपने जरूर सु करना चाहिए।

0: बिल्कुल, देखो कितनी अरज कर ली इंद्र राजा ने, और अब अगर नहीं बरसे नहीं तो पूरी चूक है बिहारी गीत रामायण कहीं बाकी नहीं रहा के आपे यानी राजीकरण खातर। तो अब यार पूनम जी आपे बात करी जो आप बॉल बनावनी सीड्स बॉल, एड़ा ही कुछ एक बीज और है जो आपने वास्ते खूब फायदेमंद है, और अगर वे आपने रोजमर्रा की जो दिनचर्या है बिर मैंने अगर आप इन्हें शामिल करो तो कई तरह लाभदायक है शरीर वास्ते। तो इन खातर एक चर्चा आपे आज इन कार्यक्रम में मैंने लेन आया हाँ आकाई है पूनम जी।
1: वही है कि कुछ औषधीय बीज हुए जो अपने स्वास्थ्य वास्ते लाभदायक होया करे। जैन चिया सीड्स की बात करा तो यह शरीर ने ठंडक और हाइड्रेट रखे, और अलसी रजी का बीज हुए हृदय ने स्वस्थ रखे। कद्दू का बीज है तो वो इम्यूनिटी बढ़ावे। सूरजमुखी का बीज है वे अपनी त्वचा ने स्वस्थ रखे। तरबूज रा खरबूज रा बीज है वे शरीर ने ऊर्जा देवे और ठंडक रो काम करे। और तिल रा जो बीज है वे अपनी हड्डियां ने मजबूत करे है। मेथी रा बीज है वे अपने पाचन रो सुधार करिया करे
0: बिल्कुल
1: है। और जीरो है जिको अपन गैस में अपच में राहत देवे। अजवाइन पेट दर्द में राहत देवे। सौंफ होगी तो वह ठंडक और पाचन रे महीने मदद करिया करे। धनिया रा बीज है वे पेशाब संबंधी जो भी समस्या है उनमें राहत देवे। कलौंजी है वायु इम्यूनिटी ने बढ़ावे। सरसों मेटाबॉलिज्म बढ़ावे। करेला रा बीज ब्लड शुगर ने कंट्रोल करे। अमरूद है जो फाइबर सू भरपूर रहा करे, अमरूद रा बीज जी का होवे। और नीम रा बीज है वे खून ने साफ करने में मदद करिया करे। तो किनी किनी तरीकों अपने यान बीजा ने अपने जिंदगी
0: जीवन
1: में
0: जीवन में
1: शामिल कर
0: दिनचर्या
1: सका।
0: में
1: अपा
0: शामिल करना।
1: कुछ ऐडा बीज है जिन्हें अपा रात रा भिगोन खा सका। कुछ ऐडा बीज है जिन्हें अपा पानी में उकाल ने उन्हें छानना अपा पी सका तो उनसे शरीर ने फायदा मिले। तो बस इन बातों पर ध्यान रखना है कि इन जो क्वांटिटी है वह 1-2 चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो गर्म तासीर वाला बीज है वे अपने सीमित मात्रा में मायने लेना
0: जी
1: चाहिए।
0: बिल्कुल, एक वो है कि भाई कौन सी ऋतु चल रही है
1: हाँ
0: उन ऋतु के अनुसार अपने इन बीजों ने काम में लेना चाहिए। एक सरल सो उपाय है जो अबारे दिनों में खूब देखियो और चाल भी रियो है कि रात रात ज्यादा पे घणो कोई काम नहीं कर सको बड़ो लंबो चढ़ो, क्योंकि जो

हरेक क्या नहीं क्या बार रो जो जीवन है वो बहुत व्यस्त चलिया करे, तो रात्रा एक जो जग वे बड़ो सो 1 लीटर रो या 2 लीटर रो, बिर मायने आप कोई भी बीज रात्रा 1 चम्मच या 1.5 चम्मच जो भी पानी की मात्रा है उनने अनुरूप डाल दो आप। अगर 1 लीटर है तो 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आप डाल दो, पूरी रात मैंने रेवन दो, कहीं मत करो, सुबह आप निने काल जे वो छाणन पी लो। इन मायने कोई घणो टाइम नहीं लागे है, पर धीरे धीरे धीरे धीरे इन चीजों जो गुण है वे आप जरूर फायदेमंद वेला, तो बिल्कुल अपनार देखो।

0: पूनम जी, आप इतना सारा गुण बताया है इन बीजा रा के लागे कि कुछ एक चीज एडी होनी चाहिए कि आप झटा झट बना फटाफट टाबरन दे सकूं कि वे पीवन में भी यार वास्ते या खावन में आरामदायक वे वे बिना कोई नाक मुसी कोड़े खा भी लेवे और वे शरीर वास्ते भी पौष्टिक वे
1: बिल्कुल एडी चीज है वह टावर वासी नहीं बल्कि अपना घर जो भी उम्र रहा है लोग अपने परिवार का सदस्य सबारे वास्ते फायदेमंद है वो है प्रोटीन पाउडर। तो जितना भी अपना बीज बताया नहीं उनमें कुछ बीज अपा इन मैंने रेसिपी में शामिल करने और पाउडर घर ही शुद्ध तरीका तैयार कर सका और घर सदस्य ने दे सका। तो इन वास्ते आपने चीजें ला मखाना भुनियोड़ा चना बादाम अखरोट खरबूजा कद्दू सूरजमुखी रा बीज चिया और अलसी रा बीज खसखस रा दाना इलायची पाउडर और मिश्री पाउडर। इलायची और मिश्री ने छोड़ने जितनी भी अपा चीजा लेनी है आधा आधा कप ले लो आप। और सबसे पहले मखाना ने एक बड़ी कढ़ाई रे मायने धीमी आंच पर आप कुरकुरा होने तक भून लो। इनी तरह बादाम अखरोट और सगला बीजा ने 2-3 मिनट तक अलग अलग भून लो ताकि उनारी जो नमी है वह निकल जावे और पाउडर लंबे समय तक खराब नहीं होवे।
0: बिल्कुल
1: चिया बीज है खसखस है इन्होंने भूनने की जरूरत को नहीं है। जब यह चीजा पूरी तरीका ठंडी हो जावे जब आप इन्हें सबसे पहले मखाना ने पीस लो और पछे जी को चिणा ने पीस लो और सूखा मेवा जो है वेण बीज ने जो आप पल्स मोड पर पीछो ताकि वेण तेल है वो नहीं निकले और वे एकदम मतलब पाउडर टाइप में
0: दरदरा रहे।
1: और सगली चीजा ने एक बर्तन रे मायने मिक्स कर लो इन रे मायने इलायची पाउडर डाल दो और मिश्री अगर नहीं डालनी चाहो या जो प्राकृतिक मिठास है वह बनी रहे तो आप मिश्री चाहो तो डालो और नहीं आपने पसंद है तो मत डालो।
0: सही
1: और पसंद है तो आप मिश्री पाउडर डालना अच्छी तरीके से मिला लो तो आप प्रोटीन पाउडर तैयार है। एक साफ और सूखी बरनी रे मायने आप भरने 1-2 महीना तक इन्हें इस्तेमाल कर सको। चाहो तो दूध में पियो स्मूदी में पियो शेक में पियो या पचे सुबह रे नाश्ते में जो आप ओट्स और दलियो खाया करा उन्हें माते भी बुरक ने अपने खा सके।
0: बिल्कुल और एकदम आसान तरीको है अपनी सेहत सुधारने रो।

0: पूनम जी,
1: हम्म,
0: आपने जो मार्ड भाषा रो कार्यक्रम है, इर मायने आपा एक खास सेगमेंट हर बार ले आया करो, जिर मायने आपा इन भाषाओं गुथी जोड़ी, इन्हीं जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, आपनों जो समाज है, रहन सहन है, बिना बारे में आप बातचीत करिया करो। और एक मीठी सी कहावत आपने सखिया ने सुनाया करो, तो आज की कहावत है, ज्ञान और घुचो दूजा कई चोखो लागे। मतलब वो है कहवाणो कि अब देखो कि कोई सलाह देवनी है नी तो आप देव जब तक तो ठीक है, पर जब लेवनी बात आवे नी तो शायद ही कोई वेला जो उनमें अमल करे। और घोचो करनो यूं ही है कि भाई कोई चीज री आप कि नहीं क्यों बार बार का यूं नहीं करियो और यूं नहीं करियो, हर टाइम कोई मीन मेख निकालनी है, परेशान करनो कोई बात में, तो आ दूजा ने करो जब तक ही ठीक लगी, आपा ने कोई कर ही नहीं, जन आप ही दोरा दोरा दोरा दोरा हो कि भाई आ चीज ठीक नहीं हो रही है। तो बिल्कुल ज्ञान और घोचो दोयर माने आ चीज लागे होवे कि दूजा ने मिले जट तक ही ठीक है, आपा तो ही नहीं आवे तो बढ़िया बात है।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: देखो कि बाघ और भंवरा मोरया ये सब आषाढ़ और सावन रा संकेत है और बिल्कुल बढ़िया लगे। पर आजकल जो आप देख रहे हो जो मौसम है इरमान, आप आई आशा रखो कि झटसू इंद्र राजा पधार जावे। टाइम देखता था कहाँ पूनम जी, यूं लाग रही हो कि समय री चक्री रे सागे सागे आपा ने भी चालनो पड़ी और आपने सखियां सु विदा लेवनो टाइम आएगी है। तो चालता चालता आप सगड़ा ने बताए दो कि इन कार्यक्रम री परिकल्पना संयोजन और प्रस्तुति राम निवास चोयल री थी और कंसोल पर ए आपा ने इतना फूटरा फूटरा गीत जो जुड़ाया सुनाया बेहा जयश्री। तो इन सागे ही आपरी दो ही सखियां ममता राजपुरोहित और
1: पूनम देवड़ा ने दिराओ सीख,
0: चाला
1: चाला राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।

0: धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
1: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
2: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
0: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
3: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए

0: काइची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और ये सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपने

0: आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
1: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।

0: तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
1: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसी जी लिखते हैं।
0: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
1: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
1: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से ये जानना चाहते हैं।
0: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
1: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
0: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
1: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
0: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है, तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
1: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
0: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
1: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
0: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते।
1: जी,
0: धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
1: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है,
1: जी।
0: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की, लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए, और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर, यानी 8800440559 पर, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए

0: सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता
3: है ना साथियों? अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ?
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं? क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ बताती हूँ, जल्दी क्या है।
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
7: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
6: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
7: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
6: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
7: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
6: हाँ हाँ मामा जी से पूछेंगे।
7: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
6: मामा जी।
8: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
6: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
8: ये तो बहुत अच्छी बात है
6: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
8: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
6: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
8: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भूर्ज वृक्ष कहा जाता है।
6: अच्छा, भूर्ज वृक्ष?
8: हाँ, भूर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
6: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
8: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
6: अच्छा,
8: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
6: ये किस भाषा में है?
8: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने, ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
6: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
8: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो।

0: अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
3: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे, जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
4: जी।
3: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रहीं
4: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
3: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं, कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
5: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524

1924 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती, शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं। इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस, वहीं खड़े रहो। शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूं, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूं, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा, वाह। और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की इस हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया।

0: लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
1: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
2: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
1: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
2: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
0: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
3: अलख निरंजन।
4: साधु बाबा।
3: अब अच्छा,
4: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
3: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं
4: क्या?
3: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
4: है?
3: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
4: अच्छा।
3: हाँ,
4: बहुत बड़ी फौज है।
3: और नहीं तो क्या बच्चा। अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है। बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
4: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
3: अच्छा,
4: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
3: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
4: बिल्कुल है।
3: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
4: उसका भी इंतजाम है।
3: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
4: देखो हा? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
3: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
4: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर

0: बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
0: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूं। बदन सिंह रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभालो।
1: हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, ला तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: और श्रोताओ, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर दोपहर के 3 बज रहे हैं। मीडियम वेव चैनल पर आज की पहली सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूरी नगरी चैनल है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुने युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: हाँ जी, आज की शाम का माहौल पूरी तरह से सेट है। बाहर का माहौल भी बढ़िया हो रखा है साहब। धूप से कुछ हद तक आज के दिन को राहत मिली है। टेम्परेचर थोड़ा सा गिर चुका है, माहौल सेट हो चुका है। और एज वी नो शाम के 5 बज चुके हैं, तो प्रोग्राम युवाणी लेकर हाजिर हूँ मैं आज, आपका रीड दोस्त राहुल। और आज की शाम बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन। क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में, क्या कुछ खास बातें जो आपको जानना ज़रूरी, युवाओं को जानना ज़रूरी, उसी प्रोग्राम को लेकर, प्रोग्राम जिसे युवाणी नाम कहते हैं, आज हाजिर हूँ मैं आपके साथ। और बढ़ेंगे आगे, लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद म्यूजिकल ट्रैक।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
2: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
2: वेलकम बैक जी, आपका एक बार फिर से प्रोग्राम युवाणी को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप इस आवाज के साथ। इस आवाज का नाम राहुल और युवाओं का प्रोग्राम चल रहा है, तो युवाओं के लिए खास अपडेट आ चुकी है। और हम सभी को जैसे कि पता है 5 और 6 जुलाई को जो है वो LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क का एग्जाम होने वाला है। RSMSS भी कंडक्ट कराने वाली है। और इस एग्ज़ाम के बारे में छोटी सी डिटेल आपको बताऊं तो भैया, सिटी जो थी वो डिक्लेयर पहले कर दी गई थी कि भैया आपकी जो सिटी है वो कब किस एग्ज़ाम आपका जो है वो कहाँ होने वाला। और अब जो है वो एडमिट कार्ड भी प्रॉपर तरीके से जारी कर दिए गए हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा, वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर जाके चेक कर सकते हैं, जो कि है SSOID.rajasthanservicerules.in। जी हाँ बिल्कुल, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के बारे में अगर मैं कुछ बात करूं तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। पहली शिफ्ट 9:30 बजे से लेकर 12:30 तक चलेगी। अगर आपको इस एग्ज़ाम में बैठना है, अगर आपने फॉर्म फिल किया है, तो आप जो हैं वो 8:30 से पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएं, वरना आपका प्रवेश जो है वो वर्जित कर दिया जाएगा। 1 मिनट भी अगर आप 1 सेकंड भी लेट हुए तो आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। पहला एग्ज़ाम जो होगा उसमें जनरल नॉलेज और साइंस और मैथमेटिक्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद दूसरी शिफ्ट में वापस 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 3 से लेकर 6 बजे के बीच में, जहां आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप इस एग्ज़ाम में पास होते हैं तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और फिर दोनों की मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम है, तो आपको पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आगे, ये एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो

0: केमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: वेल, जिस तरीके से आजकल हम चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं ना, इतना मन लगाकर इतने शिद्दत के साथ खिताब पढ़ लेते, तो आज बॉस को इंग्लिश में मेल लिखवाने के लिए इसकी ज़रूरत हमें ना पड़ती। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल जी, प्रोग्राम मॉर्निंग को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप इस आवाज़ के साथ। इस आवाज़ का नाम राहुल, और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ इन दिनों भर भर के किया जा रहा है। तो हमने हमारे शहरवासियों से जानने की कोशिश करी है कि भैया, अगर आपकी रियल लाइफ में असिस्टेंट बनकर एआई आ जाता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आ जाता, तो आप उससे क्या काम करवाते? आइए जानते हैं।
1: हाय, दिस इज मुस्कान सिंह एंड आई एम केन कॉलेज। सो अगर मुझे ऐसा कोई चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती, तो मे बी आई विल मेक एआई माय बॉयफ्रेंड, बिकॉज ही ऑलवेज सॉल्व माय ऑल प्रॉब्लम्स, लाइक वेन एवर आई फेल्ट अनसर्टेनिटी। सो आई फील लाइक ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड सॉल्व ऑल माय प्रॉब्लम्स, एंड दैट रियली काइंड ऑफ लाइक फॉर मी इट्स अ काइंड ऑफ हेल्प, आई वुड से। सो या, मैं उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाती हूँ।
2: अगर एआई एक दिन आपकी जगह कॉलेज जाएगा तो क्या हो जाएगा?
1: अगर वो आया तो डेफिनेटली फिर मेरे बैक नहीं आने वाले हैं सब्जेक्ट्स में। आई एम डैम श्योर नहीं आने वाले फिर बैक।
2: ओके, अगर एआई आपके लाइफ में आता है असिस्टेंट बनके, सबसे पहली चीज क्या कराओगे आप उससे?
3: हाय, मेरा नाम आकांक्षा है, एंड अगर एआई लाइक हमारी लाइफ में होता तो हम उससे पहले यूजुअली हमारे घर के डेली लाइफ के काम करवाते, बाकी कुछ नहीं।
2: घर के काम करवाते?
3: हाँ, क्योंकि हम खुद नहीं करते ना।
2: ओके, एक वन वर्ड में एआई को डिस्क्राइब करना है, दोस्त, दुश्मन, टीचर या फिर जादू?
3: दोस्त।
2: अगर एआई आपके मदर फादर का फेवरेट बन जाएगा तो आपको किस बात की टेंशन होगी?
3: कहीं मेरे राज ना खोल दे, बस चुगली ना कर दे।
4: हेलो, मेरा नाम हेमंत है। अगर एआई मेरा असिस्टेंट होता, आई वुड मेक एआई टू टेक्स्ट माय जीएफ गुड मॉर्निंग मैसेज बिकॉज़ आई एम टू लेजी टू डू इट।
2: सबसे पहली चीज उससे क्या करवाते हैं आप?
3: घर के काम
2: और क्या क्या?
3: झाड़ू पोछ। हेलो, माय नेम इज निकिता एंड आई एम फ्रॉम केन कॉलेज। बर्तन, जिम, डांस, जो काम कर सकते हैं सारे, सबसे मेन तो एग्जाम दिलवाना।
2: थैंक यू सो मच।
0: चलिए जी, तो ये थी हमारे युवाओं की एआई के प्रति बात। आप और हम फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने। मजेदार से गानों में अगला गाना आप एंजॉय कीजिए। गाना मैं बस यूं गया और यूं आया।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: बिल्कुल जी, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से प्रोग्राम युवाणी को एंजॉय कर रहे हैं आप इस आवाज़ के साथ। इस आवाज़ का नाम राहुल। और मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं कि आपको सिर्फ गाड़ी चलाने नहीं आनी चाहिए, उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन से मेरा ये मतलब है कि आपको गाड़ी ठीक करना नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका अगर कोई चालान आ गया है, ठीक है, तो आपको उसे फिल कैसे करना है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि चालान आ तो जाता है, हमें पता भी चल जाता है, हमारे पास टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है कि भैया चालान हो चुका है आपको भरना, और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर हम अगर 75 से 90 दिनों तक करेंगे, तब तक तो हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि हम जो है वो चालान पे कर सकेंगे ऑनलाइन। नहीं तो अगर वो ड्यूरेशन अगर 90 दिन से ऊपर चली गई उस एक चालान की, तो फिर आपका वो चालान जो है वो कोर्ट में चला जाएगा, और जहां आपका जो चालान कटा है जिस एरिया में, चाहे आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी घूमे हो, आपको उस कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। आप फिर ऑनलाइन चालान कभी भी नहीं भर सकते हैं, उसके लिए आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको कोई चालान आ गया है तो आप जो है वो अपना चालान ऑनलाइन ही भर दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और चालान आए ना, ऐसी चीज़ें करो ना, सीट बेल्ट प्रॉपर लगाओ, स्पीड को अपनी जो गाड़ी है उसकी स्पीड को जो है उस कंट्रोल में रखो, जहाँ आप जिस वे में चल रहे हो उसी तरीके से रखो। और अगर आप ऑनलाइन चालान पे करना चाहते हैं, आपको पता है कि भैया चालान आ चुका है, तो चालान पे करने का एक तरीका है ऑनलाइन।

0: वेबसाइट है जो कि है parivahan.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है वो चालान भर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको चेक चालान स्टेटस आएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद तीन ऑप्शन आएंगे जिसमें चालान नंबर, व्हीकल नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, इन तीनों में से किसी एक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो कैप्चा दिया होगा उसे फिल करने के बाद आपकी जो चालान की डिटेल है वो सारी आ जाएगी। एक है, दो है, तीन है, चार, जितने भी चालान हैं कटे हुए हैं या अभी उसे आप पे कर सकते हैं या फिर आपका जो है चालान ओवरड्यू हो चुका है, उसे पे करने की तारीख निकल चुकी है, वो सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे, बाय यूपीआई, बाय डेबिट कार्ड, बाय क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके से आप चालान को जो है वो फिल कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट में रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए आप और हम मिलकर बढ़ेंगे आगे, लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद म्यूजिकल ट्रैक को एंजॉय करेंगे।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: आज हम एक ऐसे प्लेयर के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोग्राम युवाणी इस वक्त चल रहा है और बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ एक ऐसे प्लेयर की बात जिसका जो क्रिकेट एक्शन है, क्रिकेट बॉलिंग एक्शन है, हम हर बार ट्राई करते हैं, कई बार ऐसा करते हैं कि यार इस एक्शन से मैं बॉल फेंकूंगा गली क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन वो एक्शन जो है वो बहुत बार मतलब परफेक्टली तो हो ही नहीं पाता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हरभजन सिंह, जिसका निकनेम है भज्जी। उनका आज है हैप्पी वाला बर्थडे। और उनके बारे में अगर बात करें तो जब उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत करी थी ना, तो वो खुद से तो फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, लेकिन कोच के कहने पर उनकी सलाह से उन्होंने फिर ऑफ स्पिन को चुना और ऑफ स्पिनर बने। 2001 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनके काल का जो है वो स्वर्णिम काल रहा। उस वक्त भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टूर्नामेंट चल रहा था, मैच चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया गजब के फॉर्म में चल रही थी। इस सीरीज़ में उन्होंने जो है वो हरभजन सिंह ने 32 विकेट टोटल लिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी रहे। और ऑस्ट्रेलिया की जो फॉर्म थी वो कुछ इस कदर थी कि उन्होंने उस मैच से पहले 16 टेस्ट मैच लगातार जीते थे, वो मैच हार ही नहीं रही थी। लेकिन इस जीत पर अंकुश लगा, वजह थी हरभजन सिंह, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। और 2-1 से वो जो है बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी वो सीरीज़ थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की, वो उन्होंने जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। इसके बावजूद, इसके बाद हम अगर हरभजन सिंह के करियर की बात करें तो उन्होंने टेस्ट मैच टोटल खेले थे 103, जिसमें से 417 जो है विकेट उन्होंने अपने नाम किए। और ODI मैच की बात करें तो 236 कुल मुकाबले उन्होंने खेले और 269 यानी 269 विकेट उनके नाम रहे। T20 करियर कुछ खास नहीं रहा, छोटे मुकाबले थे। जब तक वो T20 करियर की शुरुआत हुई थी तब तक वो अपने रिटायरमेंट के करियर पर थे और 28 टोटल मैच खेले और 25 विकेट लिए। और इस बीच टोटल उनके मैचेस की बात करें, इंटरनेशनल मुकाबलों की बात करें, तो 367 मैच उन्होंने खेले और 711 विकेट उन्होंने लिए। ये इनका क्रिकेट का करियर रहा। शुरुआत जिनकी हुई थी 3 जुलाई 1980 से और आखिरी जो मैच उन्होंने संन्यास लिया वो था 24 दिसंबर 2021 का, वो दिन जिस दिन उन्होंने संन्यास लिया। फिलहाल प्रोग्राम ये वाणी चल रहा है, लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद आप एंजॉय करेंगे मजेदार से गाने।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश

0: प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: वेलकम बैक जी आपका एक बार फिर से। इस वक्त प्रोग्राम यवाणी को एंजॉय कर रहे हैं आप, और फ्राइडे की शाम है। जिनका 5 डेज़ का वीक है उनके तो भैया आए हाय, आज की शाम तो बस मौजा ही मौजा होने वाली है, क्योंकि सैटरडे और संडे का ऑफ मिलने वाला है। और मौसम ने जो दस्तक दी है, जो हल्का सा टेम्परेचर में गिरावट आई है, तो इस वीकेंड पर उन्होंने, मेरे को लगता है, अब तो कहीं बाहर गाँव जाने का, घूमने का प्रोग्राम भी बना ही लिया होगा। और प्रोग्राम यवाणी चल रहा है तो क्रिकेट की बात कैसे पीछे रह सकती है। और एक नई अपडेट भी आ चुकी है, भारत और श्रीलंका के बीच आने वाले टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत भारतीय क्रिकेट टीम अब 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को लेकर अगस्त में जो है श्रीलंका का दौरा करेगी। शेड्यूल के मुताबिक पहला जो टेस्ट मैच है वो 15 से लेकर 19 अगस्त तक गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच जो है वो 23 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक कोलंबो में होगा। और अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग की बात करें तो भारत का जो स्थान है फिलहाल 5वें स्थान पर भारत है, और वहीं श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जस्ट एक स्टेप आगे यानी 6ठे स्थान पर। जी हाँ बिल्कुल, भारत 5वें और श्रीलंका जो है वो 6ठे स्थान पर मौजूद है। फिलहाल लेंगे के छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर से हाजिर होंगे।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: वेलकम बैक, एक बार फिर से प्रोग्राम युवाने चल रहा है और शुक्रवार का दिन है। मजेदार सी प्लेलिस्ट के साथ एक बार और एक नई खबर के साथ। भैया गेम बात कर लेते हैं चेस की। आर प्रागनंदा ने कीमर को 26-4 से हराया, क्या है पूरी बात आइए जानते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा ने ग्रैंड चेस टूर के जागरेब चरण की शानदार शुरुआत करते हुए टॉप सीड जर्मनी के विसेंट कीमर को सिर्फ 26-4 में ही हरा दिया। प्रागनंदा ने आक्रमण खेल दिखाया और लगातार दबाव बनाकर 2 अंक हासिल किए। दूसरे राउंड में उन्होंने फ्रांस के मैक्सिंग वाशिय लग्रेव से ड्रॉ खेला और वहीं डी गुकेश की अगर बात करें तो उन्होंने पहले राउंड में हारने के बाद दूसरे राउंड में क्रोएशिया के इवान सारिच को भी हरा दिया। फिलहाल ये थी क्रिकेट अपडेट के बाद चेस की खबर। बढ़ते हैं आगे म्यूजिकल ट्रैक के बाद, आपसे फिर जुड़ेंगे।

0: लगे थे जिसकी साजिश में, और कर रहे थे भगवान से जिस चीज़ की ख्वाहिश, अब वो हो चुकी है पूरी। जी हाँ, मौसम बदल चुका है, बारिश का जो माहौल है बिल्कुल जम चुका है शहर में, और जिनको इंतज़ार था ना कि यार ये टेम्परेचर तो डाउन हो चुका है, लेकिन अब हमें जो बारिश की बूंदें हैं वो, ये माहौल वो कब नज़र आएगा, तो बिल्कुल अब नज़र आने लगा है। और मज़ेदार से गानों के बीच में और बरसात भी आप अब एंजॉय कर रहे हैं, और युवाओं का प्रोग्राम चल रहा है, तो युवाणी में जो है वो सरकारी नौकरी की जानकारी किस तरह से पीछे रह सकती है, लीजिए बिल्कुल बता देते हैं आपको। सरकारी भर्ती आ चुकी है, आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टेक्नीशियन के लिए 6,557 पोस्ट पर भर्ती जारी कर दी गई है, और इसके लिए एज लिमिट की मैं बात करूँ तो 18 से 30 साल तक के जितने भी युवा हैं वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे, और आप जो हैं वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कब कर पाएंगी, 30 जून से अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं और 29 जुलाई 2026 तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगर ज़्यादा डिटेल इस भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं rrbapply.gov.in, ये इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता की मैं बात करूँ तो बीई, बीटेक, आईटी सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, और आपके पास 12th पास विद पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आप 12th पास हैं, तो इन पोस्ट पर आप भर्ती जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट मैंने बताई आपको, rrbapply.gov.in। लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद गाना एंजॉय करेंगे।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

क्या बात है, बेहतरीन से म्यूजिकल ट्रैक के साथ आज का प्रोग्राम रिवाणी का जो सफर है अब यहीं होता है समाप्त। आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति रही राजेश लामरोड की, इस आवाज़ का नाम राहुल और कंसोल पे हमारे साथ विनीता जैन। हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम, नई बात और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। शाम की 6 बज रहे हैं। प्रस्तुत है समाचार जिन्हें हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचार पहले हिंदी में, फिर अंग्रेज़ी में होंगे।

0: भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित दान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है।

कार्यक्रम विवरण में पहले एक नज़र आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों पर, फिर कल प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों पर एक नज़र।

आज शाम 6:42 पर होगी जिले की चिट्ठी। किसान भाइयों के लिए चौपाल सजेगी। शाम 7 बजे सीमा डेरी गूंज, ये कार्यक्रम होगा शाम 7:30 पर।

रात 10 बजे श्रोताओं के ईमेल आधारित कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत, जिसमें श्रोता अपने फरमाइशी गीत सुन सकेंगे।

श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कल रात 9:30 पर राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। रात 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा, जिसमें पंडित अनर्ब चट्टोपाध्याय की प्रस्तुति होगी।

सवेरे 8:30 पर होगा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम नमस्कार। कृषक वर्ग के लिए होगा कार्यक्रम कृषि जगत 1:05 पर दोपहर में। ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम गणगौर होगा दोपहर 1:15 पर। शाम 5:00 युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी प्रसारित किया जाएगा।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। प्रस्तुत है देशकान।

0: समूह स्वर में अभी आपने सुना देशगान। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। शाम के 6:20 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। आतंकवादं प्रति पाकिस्तान पक्षतः अविरतं क्रियमाणं पोषणं मत्वा भारतेन सिंधु जलसंधिः स्थगितावस्थायामेव रक्षितुं पुनः स्वप्रतिज्ञा दृढीकृता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पवित्रा अमरनाथ यात्रा राष्ट्रस्य आध्यात्मिक परम्परायाः सांस्कृतिक एकतायाः च कञ्चन शाश्वतम् अध्यायमिति व्याहृता। यात्रा प्रसंगे गच्छद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रद्धालुभ्यः प्रकटिताः शुभाशंसाः। केन्द्रीय वित्त मन्त्रिणा निर्मला सीतारमणेन विकसित भारतस्य गौरवपूर्ण लक्ष्य यात्रायै फ्रांस देशस्य निवेशकाः सोत्साहम् आहूताः। भूकंप पीड़िते वेनेजुएला देशे मृतकानां संख्या 2,000+ जाता। सहस्रशः जनाः सम्प्रति अपि अज्ञाताः सन्ति। भारतेन तत्र ऑपरेशन अमिस्ताद इत्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतं मानवीय सहायता कार्याणि तीव्रीकृतानि। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः यावत् गुजरात गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा मध्य प्रदेशस्य च कतिपय क्षेत्रेषु अतिवृष्टेः संचेतना प्रख्यापिता। अपि च क्रीडा वार्तासु फीफा विश्व कप क्रीडा मालिकायां कैनेडा देशस्य वैंकूवर नगरे स्विट्जरलैंड देशेन अल्जीरिया देशः 2-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्रवेशः संप्राप्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य सायं नवदिल्ल्याम् आयोजितं वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् भारतेन पुनः सबलं प्रतिपादितं यत् पाकिस्तान प्रशासन पक्षतः आतंकवादस्य निरन्तर पोषकत्वात् सिंधु जलसन्धिः स्थगितावस्थायामेव वर्तते। विदेश मन्त्रालयस्य प्रमुखाधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जयस्वालः प्रावोचत् यत् सिंधु जलसंधेः विषये भारतस्य नीतिः सर्वथा स्पष्टा अस्ति। तेन गदितं यत् पाकिस्तानेन प्रथमतः आतंकवादं प्रति स्वकीयं समर्थनं सर्वथा परित्यक्तव्यम्। तीस्ता नदी समग्र प्रबंधन पुनरुद्धार परियोजनायाः विषये श्री जयसवालेन स्पष्टीकृतं यत् बांग्लादेशे विकास परियोजनाभ्यः दीयमाना भारतस्य सहायता कञ्चन पारस्परिक सम्मति प्राप्त मार्गचित्रमाधृत्य वर्तते, यस्य नियतकाले समीक्षा विधीयते। तेन प्रोदीरितं यत् तीस्ता नदी परियोजनायां भारतस्य चिन्तनं पूर्वमेव बांग्लादेशं प्रति ज्ञापितम्। सहैव भारतं तीस्ता विषये स्वकीय चिन्तने सर्वान् सम्बद्ध घटनाक्रमान् संयोजयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रतिवर्षं प्रवर्तमानां पवित्र अमरनाथ यात्रां राष्ट्रस्य आध्यात्मिक परम्परायाः सांस्कृतिक एकतायाः च कञ्चन शाश्वतम् अध्यायं व्यपादिशत्। तेन प्रोदीरितं यत् भगवतः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्यमिदं दर्शनं कोटिशः श्रद्धालूनां जीवने एकः अविस्मरणीयः अत्यन्तं मंगलमयश्चानुभवो वर्तते। अनेन सहैव सः जम्मू कश्मीर

कश्मीर क्षेत्रे वार्षिक यात्रां कुर्वद्भ्यः तीर्थयात्रिभ्यः हार्दिक्यः शुभाशंसाः प्राकटयत्। श्रद्धालून् प्रति प्रेषिते पत्रे प्रधानमन्त्रिणा अस्यां पावनयात्रायां पञ्च संकल्पानां परिपालनार्थम् अभ्यर्थना विहिता। एते संकल्पाः सन्ति शुचितायाः सर्वथा संरक्षणम्, सुरक्षानियमानां निष्ठापूर्वकम् अनुपालनम्, स्थानीय स्वदेशीयोत्पादनानां संवर्धनम्, रक्षाबंधन पर्वणि भगिन्यै भ्रात्रे वा पादपस्य उपहार प्रदानम्, तथा विकसित भारतस्य राष्ट्रिय संकल्पाय स्वयोगदानम्। अद्य प्रातःकालात् विधिपूर्वकम् आरब्धा इयं श्री अमरनाथ यात्रा नुनवान पहलगाम तथा बालताल इति द्वाभ्यामेव मार्गाभ्याम् अतीव सुचारुरूपेण निर्बाधं च अग्रे प्रवर्धते। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यगादीत् यत् भारत फ्रांसयोः रणनीतिक संधिः शाश्वत दृढ़ नवोन्मेष प्रेरित विकासस्य दिशि सर्वथा सर्वोत्कृष्टं स्थानं भजते। पेरिस नगरे आयोजितं भारत फ्रांस व्यापार सम्मेलनं संबोधयन्त्या तया सप्रमाणं प्रतिपादितं यत् प्रावधिक प्रगतेः आपूर्ति श्रृंखलायाः ऊर्जा संचारस्य भूराजनैतिक उद्भव परिवर्तनानां च कारणात् वैश्विक अर्थव्यवस्था तीव्रगत्या परिवर्तमाना वर्तते। वित्तमन्त्रिणा फ्रांस देशस्य वाणिज्य नेतारः निवेशकश्च विकसित भारतमिति राष्ट्रिय संकल्पस्य महायात्रायां भारतस्य सहयात्रिणः भवितुं सोत्साहम् आहूताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतेन ऑपरेशन अमिस्ताद इत्यस्यान्तर्गतं भूकम्पग्रस्ताय वेनेजुएला देशाय स्वकीया मानवीया सहायता प्रेषिता। विदेशमन्त्रालयेन सामाजिक संजालीय तन्त्रे प्रचलितस्य चिकित्सा कार्यस्य चित्राणि प्रसारयता सम्मुलिखितं यत् भारतीय सेनाक्षेत्र चिकित्सालयः प्रभावितेषु समुदायेषु निरन्तरं चिकित्सा सेवाः प्रयच्छति। वेनेजुएला स्थितेन भारतीय दूतावासेन कथितं यत् अस्मिन् दक्षिण अमेरिका राष्ट्रे भारतस्य व्यावसायिक सेवा गुणवत्तायाः जनसामान्यैः भूरिशः प्रशंसा कृता। वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः डेल्सी रोड्रिगेज इत्येषा सप्तदिवसीयस्य राष्ट्रिय शोकस्य घोषणां कृतवती। अनेन भीषण भूकम्पेन मृतानां संख्या 95+500 संजाता। पश्चिम बंगाल विधानसभाया नवनिर्वाचितानां सदस्यानां कृते आयोजितस्य द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य अद्य कोलकातायाः न्यू टाउन कन्वेंशन केन्द्रे लोकसभाध्यक्षेन ओम बिड़ला इत्यनेन विधिवत् उद्घाटनं विहितम्। उद्घाटन समारोहात् प्रागेव लोकसभाध्यक्षाय ओम बिड़ला वर्याय गार्ड ऑफ ऑनर इति राष्ट्रिय सम्मान प्रणामः समर्पितः। उद्घाटन सत्रं संबोधयन् लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला प्रावोचत् यत् विधायकानां कृते विधि निर्माण प्रक्रियायाः तन्त्रस्य च गभीर ज्ञानस्य आवश्यकता वर्तते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन गुजरात कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा पश्चिम मध्य प्रदेशेषु श्वः यावत् अतिवृष्टेः रक्त संचेतना प्रसारिता। अनेनैव सह छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश विदर्भ क्षेत्रेषु झंझावातस्य विद्युत प्रपातस्य चापि संभावना प्रकटीकृता। विभागानुसारं श्वः यावत् उत्तरप्रदेश बिहार आंध्रप्रदेश पश्चिम बंगाल कर्नाटक जम्मू कश्मीर लद्दाख तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना पूर्वोत्तर राज्येषु अपि अत्यधिक वृष्टिः भवितुं शक्या। फीफा विश्व चषके कैनेडा देशस्य वैंकूवर नगरे स्विट्जरलैंड देशेन अल्जीरिया देशः 2-0
इत्यंकान्तरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16।

0: स्टीन चक्रे प्रवेशः सम्प्राप्तः। इतिहासे चतुर्वारं प्रागुपान्त्य चरणे गन्तुं स्विट्जरलैंड दलं आगामी मंगलवासरे अस्मिन्नेव स्थाने कोलंबिया अथवा घाना देशेन सह स्पर्धिष्यति। अन्यस्मिन् द्वन्द्वे स्पेन देशेन कैलिफोर्नियायाः लॉन्स एलेंजिस क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 चक्रे ऑस्ट्रेलिया दलं 3-0 इत्यनेन पराभूय राउंड ऑफ 16 चक्रे स्वस्थानं सुरक्षितम्। अपरत्र कैनेडा देशस्य टोरेंटो नगरे प्रवृत्ते द्वन्द्वे पुर्तगाल देशः अपि क्रोएशिया दलं 2-0 इत्यंकान्तरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्राप्तवान्। मंगलवासरे डलास नगरे राउंड ऑफ 16 चक्रे पुर्तगाल दलं स्पेन देशं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पचपदरा में देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी से प्रदेश के औद्योगिक विकास को नए आयाम मिलेंगे। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी, श्रद्धालुओं से 5 संकल्प लेने का आग्रह किया। और प्रदेश में मॉनसून ने बढ़ाई रफ्तार, आगामी 1 हफ्ते तक सक्रिय रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बालोतरा के पचपदरा में देश का पहला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा से 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इनमें रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं।
3: प्रधानमंत्री कल प्रदेश को जिन परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण पचपदरा में विकसित रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर है, जो सरहदी जिलों में विकास और रोजगार के नए द्वार खोलेगी। यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पेट्रोकेमिकल आत्मनिर्भरता बढ़ाने और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। वे जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य देश में हवाई संपर्क को और बेहतर बनाना है। इसे विस्तृत और सतत संपर्क सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। इससे स्वदेशी विमानन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और सरकार की उड़े देश का आम नागरिक लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं के साथ ही जोधपुर रिंग रोड द्वितीय खंड पर 4 लेन निर्माण का भी उद्घाटन करेंगे। वे 1000 मेगावाट क्षमता की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के कल प्रस्तावित राजस्थान दौरे को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने आज जोधपुर और बालोतरा का दौरा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कल होने वाले समारोह की तैयारियों के जायजे के लिए बालोतरा पहुंच रहे हैं। इससे पहले वे जोधपुर पहुंचे, वहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान के विकास को नए आयाम मिलेंगे।
4: इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए बहुत आइडिया और राजस्थान में नहीं लेकिन देश का बहुत बड़ा

0: काम ये होने वाला है। मैं आपको यही कहूंगा कि उसके साथ साथ कई सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं।
1: गौरतलब है कि पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री पहले 21 अप्रैल को करने वाले थे, लेकिन उद्घाटन के एक दिन पहले रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लगने की वजह से कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। करीब 80,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एचपीसीएल रिफाइनरी से सालाना 9 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाना है। यहां के तेल को भारत सहित दुनिया भर के 40 देशों में निर्यात भी किया जाएगा। रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान पेट्रोजोन विकसित किया गया है। इससे उद्यमी सीधे रिफाइनरी से कच्चा माल प्राप्त कर सकेंगे। ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी देश के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये भारत की अद्वितीय इंजीनियरिंग का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। रिफाइनरी से 1,35,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 सालों में देश के साथ जोधपुर ने भी आधारभूत प्रगति की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के हाथों कल होने वाले जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल के लोकार्पण को लेकर कहा कि इससे समूचे मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी और क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई मिलेगी।
2: अभी वर्तमान में हमारे एयरपोर्ट की जितनी हैंडलिंग कैपेसिटी है उससे लगभग 10 गुना हमारा व्यापार हो जाएगा। उद्योग जोधपुर की बढ़ती हुई आवश्यकता है, जोधपुर के उद्योग धंधे, जोधपुर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों की बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों, जोधपुर में बढ़ने वाली नई आर्थिक संभावनाओं, इन सबके दृष्टिकोण से ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा।
1: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार ऐप के जरिए आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा शुरू की है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि नई सुविधा शुरू होने के 2 दिनों के अंदर ही 2,00,000 से ज्यादा लोगों ने अपना ईमेल पता अपडेट कर लिया है। मंत्रालय ने कहा कि आधार को ईमेल से जोड़ने पर रियल टाइम ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल से पारदर्शिता बढ़ती है और सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर मिलता है, क्योंकि इससे आधार नंबर रखने वाले लोग ये जान पाते हैं कि उनके आधार का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाबा अमरनाथ की सालाना यात्रा आज से शुरू हो गई है। पहला जत्था आज सुबह पहलगांव और बालटाल मार्गों से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों ही मार्गों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अपनी तय तिथि की बारी पर ही यात्रा में शामिल हो। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमरनाथ श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करके और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायकों से लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने और क्षेत्र के साथ राज्य की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने का आह्वान किया है। लोकसभा अध्यक्ष आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के 2 दिन के आमुखीकरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि वे विधायी बहसों के साथ उनके समाधान पर भी बात करें। उन्होंने कहा कि आज का युग डिजिटल तकनीक का युग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विधायी संस्थाओं में बदलाव ला रहे हैं।
3: ये समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है और एआई टेक्नोलॉजी का भी समय है। आप देश और दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिवीजन

0: डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। आप दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है। इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की चर्चा, डिबेट आपको वहां पर मिलेगी।
1: राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर दी गई छूट 10 जुलाई तक बढ़ा दी है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर स्थानांतरण प्रतिबंध की छूट को 5 जुलाई से 5 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये छूट दी गई है। प्रदेश में मॉनसून ने दक्षिणी पूर्वी जिलों से आगे बढ़ते हुए उत्तरी इलाकों को भी भिगो दिया है। मौसम विभाग के अनुसार करीब हफ्ते भर की देरी से आए मॉनसूनी बादल बीते 24 घंटों में जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, झुंझुनू और हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में जमकर बरसे। इस दौरान सर्वाधिक 84 मिलीमीटर बारिश जयपुर के सांभर में दर्ज की गई। मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में मॉनसून की उत्तरी रेखा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू जिलों से होकर गुजर रही है। इसके आगामी 3-4 दिनों में राज्य के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। श्री शर्मा ने बताया कि आगामी एक हफ्ते तक मॉनसून की गतिविधियां चरम पर रहने की संभावना है।
2: दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान कहीं पे भारी और कहीं पे अति भारी बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग और आसपास के लगने वाले जिलों में अगले 5-7 दिनों के लिए हेवी और कहीं पे अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जयपुर संभाग, भरतपुर, इसके अलावा अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों के लिए भी अगले 5-7 दिनों के दौरान ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहने और शेष इलाकों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से कंडीशंस फेवरेबल बनी हुई है। इस दौरान कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड्स, आकाशीय बिजली के साथ कहीं पर मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है।
1: केंद्रीय शुष्क क्षेत्र और अनुसंधान संस्थान काजरी ने बीते एक महीने में राजस्थान, गुजरात और लद्दाख के 10,000 से अधिक किसानों को वैज्ञानिक और प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया है। कृषि मंत्रालय के खेत बचाओ अभियान के तहत काजरी ने 186 कार्यक्रम आयोजित कर समन्वित उर्वरकों, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और कीट प्रबंधन पर सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों से साझा की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पचपदरा में देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी से प्रदेश के औद्योगिक विकास को नए आयाम मिलेंगे। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। श्रद्धालुओं से 5 संकल्प लेने का आग्रह किया। और प्रदेश में मॉनसून ने बढ़ाई रफ्तार, आगामी एक हफ्ते तक सक्रिय रहने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख जितेंद्र शर्मा ने तैयार किया है। श्रीगंगानगर जिले में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण का शुभारंभ हुआ। चूनावड़ में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने भाग लिया। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य करवाने के साथ साथ ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के निर्माण कार्य करवाए जाएंगे, वहीं ग्रामीणों को 125 दिन का रोजगार मिल सकेगा। कार्यक्रम में लोगों को योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिला प्रशासन के अनुसार ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। परिवहन विभाग ने भ्रष्टाचार और दलालों की भूमिका पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जिला परिवहन कार्यालय में इनवर्ड प्रणाली बंद कर दी गई है। अब वाहन सारथी पोर्टल से जुड़ी अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। आमजन खुद या ई मित्र केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। जिले में जल संरक्षण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र पद्मपुर में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों और कम पानी में अधिक उत्पादन की आधुनिक विधियों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जल संरक्षण का

0: संकल्प भी दिलाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर औषधि नियंत्रण विभाग ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण कर तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। विभाग द्वारा बड़ी संख्या में चालान भी बनवाए गए। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत काम शुरू किए जा रहे हैं। योजना के तहत सीमावर्ती गांवों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। जिला परिषद के अनुसार इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार और विकास के नए अवसर उपलब्ध होंगे। जिले के युवा क्रिकेट खिलाड़ी मानव सुथार ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में पदार्पण कर जिले का नाम रोशन किया है। अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट हासिल किए और उपयोगी रन भी बनाए। उनकी उपलब्धि पर जिले में खुशी का माहौल रहा और उनके स्वागत के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कभी कभी घर घर चिट्ठियां, मनी ऑर्डर और पार्सल पहुंचाने तक सीमित माने जाने वाले डाक विभाग ने अब रोजगार और स्वरोजगार का नया जरिया शुरू किया है। इसके तहत श्रीगंगानगर मंडल की ओर से फ्रेंचाइजी योजना 2.0 युवाओं, महिलाओं, छोटे व्यापारियों और बेरोजगारों के लिए कमाई का नया अवसर बनकर उभर रही है। इस योजना के तहत आम नागरिक डाक विभाग के साथ साझेदारी कर अपने क्षेत्र में डाक सेवाओं का संचालन करते हुए नियमित आय अर्जित कर सकेंगे। श्रीगंगानगर के डाक अधीक्षक अजय चुग ने बताया कि फ्रेंचाइजी योजना 2.0 को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। युवाओं को स्वरोजगार का मंच भी उपलब्ध होगा और डाक विभाग रोजगार की नई उम्मीद भी घर घर तक पहुंचा सकेगा। बठिंडा श्रीगंगानगर रेलखंड पर विद्युतीकरण का काम पूरा होने के बाद अब इस ट्रैक पर इलेक्ट्रिक इंजन से गाड़ियों का संचालन शुरू हो गया है। पहली बार इस रूट से इलेक्ट्रिक इंजन के साथ गाड़ी संचालन शुरू होने पर यात्रियों में प्रसन्नता छा गई। इस ट्रेन का श्रीगंगानगर पहुंचने पर अधिकारियों ने स्वागत किया। इलेक्ट्रिक इंजन से गाड़ी चलने के बाद श्रीगंगानगर से दिल्ली के बीच करीब 1 से 1.5 घंटे के समय की बचत होगी, क्योंकि इससे बठिंडा में पावर बदलने का झंझट खत्म होगा, स्पीड भी बढ़ेगी। लंबे समय से यात्रियों की मांग और लगातार बढ़ते रेल यातायात को देखते हुए रेलवे ने श्रीगंगानगर के लिए एक बड़ी सौगात दी है। इसके तहत अब तक स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जा रही काचीगुड़ा श्रीगंगानगर काचीगुड़ा रेल सेवा को नियमित साप्ताहिक एक्सप्रेस का दर्जा दिया गया है। इससे राज्य के सीमावर्ती इस जिले का दक्षिण भारत से रेल संपर्क और अधिक मजबूत होगा। इस निर्णय से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ क्षेत्र के यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। दक्षिण भारत में शिक्षा, रोजगार, व्यापार और चिकित्सा कार्यों के लिए जाने वाले यात्रियों को अब अस्थायी व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम। विकास री 1,06,000 करोड़ रुपया बत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावां रो उद्घाटन करण सागे नवी परियोजनावां रा काम री शुरुआत करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राजस्थान रिफाइनरियों प्रदेश रो औद्योगिक विकास और तेज फैला। अमरनाथ यात्रा शुरू हुई, प्रधानमंत्री यात्रुओं 5 संकल्प लेवन रियरज कीनी। और प्रदेश में चौमासारी बिरखा तेज हुई, आवता 1 हफ्ता ताई चोखो में बरस बारा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल बालोतरा जिला रा पचपदरा माए देश रा पहला ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ने जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम है। वे बालोतराऊं विकास री 1,06,000 करोड़ रुपयाऊं बत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावां रा उद्घाटन करण सागे नवी परियोजनावां रा कामां री शुरुआत करेला। माणा खबर नवीस बतायो के आमाय रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरा माय आवण जावण रा सुविधाओं जुड़ी न्यारी न्यारी परियोजनावां शामिल है।
2: प्रधानमंत्री कल प्रदेश को

0: परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण पचपदरा में विकसित रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर है, जो सरहदी जिलों में विकास और रोजगार के नए द्वार खोलेगी। यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पेट्रोकेमिकल आत्मनिर्भरता बढ़ाने और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: इनो पहले प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल भवन रो उद्घाटन करेला। 480 करोड़ रूपये रा खर्चो बनाई जो नुओ टर्मिनल भवन सालाना 20 लाख मुसाफिरा रे आवाजाही न ध्यान रखता था का डिजाइन करी चियो है। श्री मोदी जोधपुर माय संशोधित उड़ान योजना री शुरुआत ही करेला। ई योजना रो मकसद देश माय हवाई जुड़ाव ने और बेहतर बनावनो है। प्रधानमंत्री चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ बीच रेलानी पटरियां दोवड़ी बनावन री परियोजना सागे जोधपुर रिंग रोड रा दूजा हिस्सा माथे 4 लेन री सड़क बनावन रा काम री शुरुआत करेला। व 1000 मेगावाट बोतारी बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना ई जनता ने सौंपेला। प्रधानमंत्री रा राज्य रा काल प्रस्तावित दौरा न ध्यान रखता था का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो पचपदरा रिफाइनरी रो दौरो कैर काल फेवन वाला जलसारी तैयारियां रो जायजो लेवन रो कार्यक्रम है। इनो पहले जोधपुर माय खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का वह कहो के पचपदरा माय तेल साफ करण रा कारखाना हो प्रदेश रो विकास और तेज फैला।
2: इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक राजस्थान के लिए ग्रोथ ड्राइवर और राजस्थान में तो ही लेकिन देश का बहुत बड़ा काम ये होने वाला है। मैं आपको यही कहूंगा कि उसके साथ साथ कई सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं।
1: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा समेत न्यारा न्यारा आला अहलकार आज जोधपुर और बालोतरा रो दौरो कीनो। ध्यान जोग है कि प्रधानमंत्री पहली 21 अप्रैल 2026 ने पचपदरा माय एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी रो उद्घाटन करने वाला हा, पर उद्घाटन रा एक दिन पहली रिफाइनरी रा एक हिस्सा माय लाई लाग जावन रा कारण कार्यक्रम टाल दियो चियो हो। करीब 80,000 करोड़ रूपये रा खर्च उमनाई जिया तेल साफ करन रा ई कारखाना माय सालाना 9 मीट्रिक टन कच्चो तेल साफ करियो चावेला। ओ तेल देश माय पूर्ति सागे दुनिया रा 40 देशा माय बेचो चावेला। ई कारखाना माय बनवा वाला दूजा छोटा मोटा उत्पादना माथे आधारित सहायक उद्योग लगावन सारू राजस्थान पेट्रो जोन विकसित करी चियो है। इनु कारोबारी सीधा रिफाइनरियों कच्चो माल ले सकेला। तेल साफ करन रा ई कारखानाओं 1,35,000 बत्ता लोगा ने सीधा या परोक्ष रूप काम धंधो मिलेला। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए लाडला 12 साल माए देश सागे जोधपुर माए बुनियादी बरकत हुई है। वह श्री मोदी रा हाथ हूं काल जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल न जनता न सौंपण रा कार्यक्रम बाबत कहो कि इनो पूरा मारवाड़ और राज्य रा आतुणी हल्का रो हवाई संपर्क बधेला और हल्का रा विकास न नुवी ऊंचाई मिलेला।
3: अभी वर्तमान में हमारे एयरपोर्ट की जितनी हैंडलिंग कैपेसिटी है उससे लगभग 10 गुना हमारा व्यापार हो जाएगा। उद्योग जोधपुर की बढ़ती हुई आवश्यकता है, जोधपुर के उद्योग धंधे, जोधपुर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों की बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों, जोधपुर में बढ़ने वाली नई आर्थिक संभावनाओं, इन सबके दृष्टिकोण से ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है।
1: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार ऐप जरिए आधार नंबर सागे मुफ्त ईमेल अपडेट रो सुबितो शुरू कीनो है। वो सुबितो 1 जुलाई 6 महीना सारू मुहैया कराई चियो है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय रा मुजब नुओ सुबितो शुरू हेवन रा 2 दिन में आई 2 लाख बत्ता लोग ईमेल पतो अपडेट करती नो है। मंत्रालय रे मुजब आधार माय ईमेल जोड़ती बगत संबंधित ईमेल माथे जानकारी मिले है। इनु साफ कोई सागे हिफाजत रो एक और लेवल मिले है। संबंधित आधार नंबर वाला मारा आधार रो जी काम माय इस्तेमाल करियो चाह रियो है मारी ठा कर सके।

0: के है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। ई साल री अमरनाथ यात्रा आज शुरू होगी। पहलो जत्थो आज हमारे पहलगांव और बालटाल रागे लाऊ पवित्र गुफा सारू रवाना भियो। यात्रुआं रा सुबिता सारू दोनों गेला माथे जरूरी व्यवस्थावां करीची है। सरकार यात्रुआं ने सुप्रीम कोर्ट रा हुकम रा मुजब आप अपनी तय तिथि माथे ही सफर शुरू करण री राय दीनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरनाथ री यात्रा सारू जावण वाला ने शुभकामनावां दीनी है। यात्रुआं सारू लिख्योड़ा एक कागज माए प्रधानमंत्री हर साल भेवण वाली अमरनाथ यात्रा ने देश री आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एका माए एक शाश्वत अध्याय बताई। प्रधानमंत्री यात्रुआं अमरनाथ यात्रा रे दौरान साफ सफाई राखण हिफाजती और प्रशासनिक दिशा निर्देशों की पूरी पालना करण यात्रा खर्च रो कम 10% वोकल फॉर लोकल पहल रा तहत स्थानीय सामान री खरीदी माथे खर्च कर स्थानीय माली व्यवस्था ने बढ़ावो देवण एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने बढ़ावो देवण सारू राखी रे मौके भाई बहन ने एक पौधो उपहार रा तौरू देवण ईमानदारियों कर्तव्या री पालना कर और विकसित भारत बनावण मा योगदान देर राष्ट्र प्रथम री भावना ने आगे बढ़ावण री अरज कीनी। प्रधानमंत्री भरोसा जतायो के अमरनाथ यात्रा आस्था सांस्कृतिक एका और सेवारा मूल्या ने मजबूत करती रहवेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विधायकाओं लोकतांत्रिक परंपरावां ने मजबूत करण और हल्का सागे राज्य री उम्मीदारी नुमाइंदगी करण बाबत कहो है। वे आज कोलकाता माए पश्चिम बंगाल विधानसभा रा नुआ चुनी ज्या सदस्या रा दो दिन रा आमुखीकरण कार्यक्रम माए बोल रहा है। श्री बिरला सदस्याओं विधायी बहस सागे वारा समाधान माथे विचार करण सारू कहो। लोकसभा अध्यक्ष कहो के मौजूदा डिजिटल तकनीक रा दौर माए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विधायी संस्थावां माए बदलाव ला रहा है।
1: ये समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है और एआई टेक्नोलॉजी का भी समय है। आप देश और दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। आप दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है। इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की चर्चा, डिबेट आपको वहां पर मिलेगी।
0: प्रदेश माए काल मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव रा तहत न्यारी न्यारी सरकारी सेवावां सारू चुनी ज्या नौजवानां ने नौकरी लागण रा कागजात सौंप्या जावेला। जिला मुख्यालयां माथे राख्या जावण वाला कार्यक्रमां माए प्रभारी मंत्री और महकमा रा अहलकार नुआ कर्मचारियां ने नौकरी लागण रा कागज देवेला। इस दौरान बालोतरा माए भेवण वाला प्रधानमंत्री रा कार्यक्रम रोई सीधो प्रसारण कर्यो जावेला। प्रदेश रा उत्तराध हल्का माए चौमासा री बिरखा शुरू होगी है। मौसम विभाग रे मुजब लाडला 24 घंटा माए जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, झुंझुनू और हड़ौती हल्का रा जिला माए जोरदार में बरसियो। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कई दौरान सबू 32.84 मिलीमीटर बारिश जयपुर जिला रा सांभर माए दर्ज करी ची। श्री शर्मा बतायो का आवता एक हफ्ता ताई चौमासारी बिरखा चालती रहवन रा आसार है।
2: दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान कहीं पे भारी और कहीं पे अति भारी बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग और आसपास के लगने वाले जिलों में अगले 5-7 दिनों के लिए हेवी और कहीं पे अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जयपुर संभाग, भरतपुर, इसके अलावा अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों के लिए भी अगले 5-7 दिनों के दौरान ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहने और शेष इलाकों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से कंडीशंस फेवरेबल बनी हुई है। इस दौरान कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड्स, आकाशीय बिजली के साथ कहीं पे मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है।
0: राज्य सरकार कर्मचारियां और अहलकारा ना तबादला माथ छूट री मियाद 10 जुलाई ताई बधा देनी है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग इन बारा माए हुक्म जारी करती ना है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहा हूं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल पचपदरा माय देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम विकास री 1,06,000 करोड़ रुपयाऊ बत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावां रो उद्घाटन करण सागे नूवी परियोजनावां रा काम री शुरुआत करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश रो औद्योगिक विकास और तेज भेला। अमरनाथ यात्रा शुरू हुई प्रधानमंत्री यात्रुआउ 5 संकल्प लेवन री अरज कीनी और प्रदेश में चौमासा री बिरखा तेज भी आवता एक हफ्ता ताई चोखो मह बरस बारा आसार। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माई प्रसारित।

0: आगलो समाचार बुलेटिन काल समारे 9 बजा हिंदी माय प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

गांव ग्वाड़ अर खेत खलियानरी बात मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्स सिंजिया 7 बजिया सुनो ना भूलो आप रो पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

लौसा हाजिर है राजस्थानी गीतारो फरमाइशी कार्यक्रम झुमको। झुमको कार्यक्रम सुनन वाला सगड़ा हेतालु श्रोता ने घने मानसू गुरविंदर बिश्नोईरा राम राम अर नमस्कार।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: और आना सगड़ा घरवाला रमेश चंद्र चौहान मोहनी चौहान कल्पित चौहान बेबी गर्वी और आना घराला माने ईमेल भेजियो है कुड़ी हाउसिंग बोर्ड
1: सादुल शहर सु ओम प्रकाश चौहान मनु प्रकाश शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान
0: और ईमेल आयो है गांव कुंदनपुरा बाड़मेर सु जगदीश सुमरा मोहनलाल नरेश कुमार निम्बाराम और आना सगला घरवाड़ा तहसील शिव बाड़मेर सु बाबूराम जयपाल
1: और कागज माने कने आयो है गांव तापू तहसील ओसिया सु लिखियो है संतोका राम मेघवंशी पटकू धीरू अशोक भाटी कुसुम भाटी आरती एलची बिदकी भाटी लाखाराम भाटी दिलीप पार्वती दिव्या और आना सगड़ा घराड़ा
0: मदनलाल झुरिया गजेंद्र शिल्पा मनप्रीत हेमलता झुरिया और आना घरवाड़ा माने ईमेल भेजियो है छिड़िया बावड़ी जोधपुर
1: आगलो कागज आयो है पहला पुलिया चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सु लिखे है दिनेश सोडा रुद्राक्ष भव्यांश रमन सोडा और जितेंद्र सोडा
0: गांव सिंदरी बाड़मेर सु ईमेल भेजियो है गणेश तरण और अणासा
1: कागज आयो है गांव चैनपुरा तहसील धोरीमीना बाड़मेर सु जगदीश भारती विजेश भारती नरेश भारती और मलिता गोस्वामी रो
2: आऊ फलोदी सु माने कागज लिखे बिकम चंद टाटिया संतोष टाटिया मनोज सुरेश खुशबू सपना धनी और मथानिया सु भगराज वर्मा बेबी वर्मा हनुमान मदन और गोविंद सुथार
1: आप सबरी फरमाइश माते सुनो आ रचना।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

राजस्थानी लोक गीतार लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथे है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई। साथिया आप माने ईमेल भेज और आपरा पसंदीदा लोक गीत सुन सको हो। मानी ईमेल अगर आप लिखनी चाहो chopal.jodhpur@gmail.com। अंग्रेजी रे छोटा अक्षरा में चौपाल यानी chopal.jodhpur@gmail.com ओ है मानो पतो जिने मुजब आप माने ईमेल भेज सको हो। गांव बेरावास तहसील खींवसर नागौर सु ओ ईमेल आयो है भुट्टाराम मेघवाल सुनील मुकेश भूराराम शोभाराम लादूराम मंजू मोनिका सुरता पूजा और शारदा मेघवाल रो। गांव पाबनासर जैसलमेर सु जितेंद्र पंवार गुलाब पंवार तेजपाल नेपाल पंवार पारस पंवार गोविंद पंवार गौतम पंवार और भरत पंवार भोपालगढ़ सु घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित चौधरी गांव जेसला तहसील फलोदी सु राजा राम जंवर और आना साथी बाड़मेर सुई नाथुराम कोडचे माने ईमेल भेजे है। गांव मेलाना सु छेलाराम मेघवाल रविंद्र देवेंद्र अनीता और फूली देवी मेघवाल। गांव चाड़ी चौथी ना सु मास्टर राजा राम शेराणी जगदीश शेराणी अरविंद संपत सईराम शेराणी पिंकू प्रभात विक्रम अशोक और धर्मेंद्र शेराणी और कागज माने कने आयो

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

साथियां ओहो मानो आज रो फरमाइशी कार्यक्रम झुमको अबे कार्यक्रम रो टाइम हो रियो है पूरो तो आपरे साथी गुरविंदर बिश्नोई ने अनुमति दिराओ नमस्कार।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: अरे नौलबा फैला पर बढ़िया पौधो लगावा दिन उगता ही उन रोज पानी देवा खाद देवा फज अंबा ओई जन खाना हां
1: घणा ही है थार केड़ा अंबा आतो हाथ उठी
0: आतो आतो नहीं होवे नौलबा ओले ओले सब
1: ना ना की गोली मत ओयोड़ा है थे तो कई है लुकड़ियो लान दे दियो ने पौधियो लान दे
0: नहीं नौलबा मैं रोज पानी पाऊं
1: अरे पानी यू कोई हर हाँ अंबा वे बात करे
0: अरे हो जाए नौलबा अरे
1: होया है होया पर
0: नेचर आ को जणो
1: घणी खपत के करनी पड़े
0: तो कह रहा नौलबा
1: जब जान है जिको अंबा कह नी अंबा कोई क्या थेले मत पड़ी है देखो
0: पर नौलबा एक नीमड़ो ही लाई मैं के भरछिया कर आपा बरनाड़ी में
1: कौन बढ़िया नीमड़ा लाई ने कह नी आंबली लाई और भले कोई कह कह नी कैरी गुंदान कोई है जो कह दूजा तीजा साग सब्जी वाली कोई रूखड़िया लाई को लाई
0: हाँ नौलबा कैरूंगा लाई नौलबा कैरूंगा पौधो
1: वाह भाई के कोनी मार के चीज नहीं खायोड़ी है
0: की नहीं खायोड़ नौलबा हम के लाऊं
1: मार एक बचीर नहीं खायोड़ो
0: बचीर तो थे जाओ मैंने काकी कने काकी अमर चार पांच के
1: बाद बाद बात करे थारे कोई मगज तो थारा काम करे कौन
0: नहीं नौलबा आ तो नहीं हो सके
1: वाह बोल ले बात करे थारे तो कही है थे तो ठिलोकड़िया करने आज दिन पति आ जाओ
0: नहीं नौलबा
1: मैं तो घर देख मारे मैं एरी बात नहीं करी मार नहीं लू ला मार लाल मैं लियो पर
0: मैं
1: कितना दौरा
0: मैं
1: मान लो बढ़ तो मारो जीव बाली
0: नहीं नौलबा मैं लगा दे हूं, मैं रोज आऊं जितनी बार पानी पाऊं
1: हां थे तो 15 दिन हूं जितने
0: हां हां थे टेंशन मत लो थोर सेवा हो जाए
1: वाह वाह होयो की कौन भाई है देखे थे थारे गरीब बा लो
0: अरे मोरे घरे तो बा वा नौलबा पर अटे आवा ना अटे रुका जन अटे भी तो जोई जाए
1: वाह वाह की कौन हूं गो हां बढ़िया है जो कह नहीं खोडा करा दे हूं हां और खाद मिंगनी आलो ने जन बढ़िया काम बजे आ है भाई देखे वो थारे वो गीत तो हूं भी आई नी
0: हाँ
1: हरियाली ने कह नी हरियाली माते कह रस्ते माते वे हरियाली
0: हाँ।
1: तो बढ़िया खुशबू आवे कई है जो कह नी रूकड़ा फल फूल ही वे है बात है और बात हाँसी है भाई के ये धरती माता ने कह नी के तो नमन करूं
0: हाँ।
1: के सब तरह रा कह नी के रस आ धरती माता उगले और कह तेजी बात हो जो आपने उगी
0: उगी
1: ठीक है नी मिनक ने कह नी हंगू हलो कह भाई कह मार पेट में पड़े
0: हाँ।
1: उन टाइम ले ना की उम्र तक आ धरती माता दे ही दे समझे नी
0: हाँ।
1: तो

0: तीरा बकाल को क्या नहीं कर नहीं सका
1: हाँ।
0: रुकड़िया रो पान लीली सैर करा जब जान कह नहीं सो को हाल तो मेरी छाटी पड़ी को नहीं
1: हम पढ़ जाए नौल बात है नहीं
0: पढ़ जाए इस वाई हूँ सका ले गया है जो खाना खोदा है हाल बढ़िया है जो आन कहो है छेटी हूँ क्या बढ़िया है जो खाद भी देखने खाद नीमड़े ना पता दूजा नेक नुका
1: हाँ।
0: जिन दिन जोरदार झिरमिर में भरी उन दिन हूँ रोपण कर दे
1: हाँ।
0: ठीक है
1: ठीक है
0: तो वही खपत करा तो कह नहीं मर्द कह के मदद दे खुदा तो मर्द नहीं मदद दे कहो कह हिम्मते मर जा तो मदद दे खुदा है
1: हाँ।
0: जरूर वही भाई चौ की बात है पर एक बात है कि हूँ एक बात कई कई उतरा दे बाकरा में दिखना दे आके देश में फिर उठे न कहूँ तो देखे इतना रूखड़ा है केलर में जान दे के नी
1: हाँ।
0: तो पग ठोर पग मेल नहीं ठोर को नहीं था रूखड़ा
1: नारियल रपेड़ हाल
0: अरे घना ही है भाई मार जाएंगे देख जड़ा उठे हूँ एक गियो जो देखो यो का मैं देखियो पर देखे मारे मन में है जो को की बात आई फस हूँ थोड़े दिनों का ये उठे कोई गीत लो हुई हो
1: है नी
0: हाँ गीत हुई हो जो को भाई मारो जीव राजी हुई हो
1: है नी
0: वो गीत हुनाऊ
1: हुनाओ नौलबा
0: हाँ धनी की जाको पड़ी हुनो
1: हाँ सही बात है नौलबा हुनाओ।

0: देखियो ये कौन चित्रकार है भाई। हाँ। देखे कौन बने इतिहास तरह तरह री चीज बुस्त बनाई तरह तरह रा कहनी पंख पंखे रू बनाया तरह तरह रा जीव जिनौर बनाया और तरह तरह री कहनी की चीजा बना मिनक ने दी मिनक है जिको कहनी उनो पापो काटन में लगेड़ो है।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।

0: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
1: बात तो सही है। हाँ।
2: क्या सुनी धरती करे पुकार, पौधे लगाओ करो श्रृंगार, तो मोटी बात है। ले हम भाई बताओ कहूंगा जो कह नहीं। हाँ। जलमिया कुड़ बहुत शीला।
1: हाँ। आज नवलू अपारे जन्मदिन है अद्रु गोपाल कृष्णन जीरो।
2: हाँ।
1: अपारे नवलूबा केरलू है।
2: हाँ।
1: और यानी मलयालम सिनेमा है नी।
2: हाँ।
1: उना एक फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता है।
2: मार के
1: अरे आ रही है
2: जो कोई मारी फिल्म दे जुड़ी वाला अर्थ की देखे जट जलमिया जट कह नहीं की लोग सेवा करी।
1: हाँ।
2: मोटी बात है तो आने कहूँ है जो
1: मुबारकबाद
2: मुबारकबाद हाजता जा रहे और सबकी फिल्म दूजी बढ़ाता रहे और मिनका ने राजी करता रहे कोटी कोटी आने बधाई है। बड़े
1: बड़े नवलबा आज रे दिन अपारे जन्म हो हंसा मेहता जी रो। अपारे सूरत गुजरात होती नवलबा और एक यानी समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षा विधि।
2: क्या भाई देखा गुजरात की धरती माता यहाँ के देश में लुगई जाति है जो घड़ा मोटा काम करिया।
1: एनी नवलबा अपारे संविधान सभा भी सदस्य रियोड़ी और अपारे अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन जी को जेनेवा में हो नी उन्होंने अपारे भारत रो प्रतिनिधित्व करियो।
2: अच्छी बात है भाई देखा लुगई जाति देखो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बने तो सलाह मशीरो लियो और लुगई जात ने कह नहीं भाई देखे हक हकू दिया तो यही बिरला काम करी उड़ा है जो आज सही तरक्की करी हो तो आनी है जो कह नहीं कोई नहीं भूल सके पर बात पौ धोक देवा कोटि कोटि नमन करा मंदड़े रा फूल चढ़ाओ। भले
1: बड़े नवलबा आज रे दिन अपारे जन्म हो रामचंद्र दत्ता नेत्र रांडे जीरो। अपारे कर्नाटक हुआ नवलबा।
2: हाँ रांडे आओ।
1: हाँ अपारे एक संस्कृत विद्वान और दर्शन शास्त्री हा नवलबा।
2: वाह भाई के को दर्शन दिया जी कोई चौका और विद्वान मैंने कहा गुणी हाँ तो चौका काम कर गया तो आनी कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदड़ेरा फूल सनाओ। बड़े
1: बड़े नवलबा आज रे दिन अपारे जन्म हो हबीब उर रहमान लुधियानवी जीरो। अपारे लुधियाना पंजाब हा नवलबा और एक स्वतंत्रता सेनानी होता। अपारे नवलबा खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में भाग लियो तो और अपारे भगत सिंह रे जिम टाइम असेंबली बम कांड हो नी उन पचे भगत सिंह रे परिवार ने एक महीने तक आप रे उठे आश्रय दियो तो।
2: भाई देखे मोटी बात है के धर्म धर्म री ठौड़ है।
1: हाँ।
2: और मिनक पड़ो ठौड़ है और भगत सिंह जी से तो कह नहीं के भाई अंग्रेजा माते ध्यान कह नहीं हाँ खांचन खातर बम फेंकिया।
1: हाँ।
2: तो आने हज को कह नहीं अंग्रेज गिरफ्तार कर दिया और जेल मेल दिया तो लारू परिवार हाथे एक हाथे कहीं कह नहीं की भाई दुख पड़े।
1: हाँ।
2: उन टाइम है महीनों भर आरे घरे रह रा किया और कह नहीं आजादी रा कह दीवाना आजादी रा दीवाना ही। हाँ भाई एड़ा क्या बिरला मिनका ने पर बाते पौर धोक देवा और अखी दत्रा गुल पेश करा कोटी कोटी नमन करान मंदड़ेरा फूल सदाओ। बड़े
1: बड़े नवलबा आज रे दिन अपारे फोत होया राजकुमार जी। एड़ा नवलबा फैला नाम हो तो कुलभूषण पंडित। और अपारे एक फिल्म अभिनेता हा नवलबा। अपारे एनी पैगाम वक्त नीलकमल पाकिजा मर्यादा जड़ी कई फिल्म में काम करियो और एने अपारे नवलबा पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी सम्मानित।
2: ठीक ओल्ड गया है तो कश्मीर रहा।
1: हाँ।
2: और कहता एक वो और कोई बात भी कह रही मैंने याद है।
1: हाँ, कब बात कही नवलबा
2: की वो कहता की सिन्हा सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। मन याद है।
1: वाह
2: नवलबा।
1: नवलबा फिल्म में काम क्यों नहीं कर।
2: अरे मैं घर देखना है कही है
1: थे। देख कन्या नवलबा थे उठ।
2: अरे काम कर मन भाई देखे मर्जी को लिए।
1: अरे नवलबा हमें
2: अरे बात दुनिया ना रही मार लाल बात मत
1: नहीं
2: नहीं तो एक बात अपन का काश्तकार माते किसान माते नहीं।
1: हाँ।
2: फिल्म बनी मदर इंडिया।
1: हाँ।
2: है जिको कह जी कि खास काम करियो वो उन टाइम उठे हो
1: है नी।
2: हाँ।
1: तो नवल बथवाने उठे ऑडिशन देना होता
2: ना दियो रहा मार को दे रहा
1: हमें आला नवल।
2: अरे वाह बोल दी जाए हूँ गीत सुनो आर माते कैमरों फेर जुड़ चुको
1: हुना हो नवल बा।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: भले
1: नौलबा आज रे दिन अपारे फोत होया योगेश कुमार सबरवाल जी अपार नौलबा दिल्ली हा और भारत रा पर 3600 मुख्य न्यायाधीश रियोड़ा।
0: ओ ठीक ठीक जज साहब।
1: हाँ।
0: वाह भाई बढ़िया तो आनी कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है आरा फैसला आज ही नजीर में हम ही आवे तो आने फूल चढ़ाऊं बड़े
1: बड़े नौलबा आज रे दिन अपारे फोत होया सुदर्शन अग्रवाल जी अपारे पंजाब हा नौलबा और एक सिविल सेवक रियोड़ा उन अलावा अपारे उत्तराखंड और सिक्किम रा राज्यपाल रियोड़ा।
0: वाह भाई वाह तू चोका मोटा होदा हमालिया अंसो का काम करिया तानी कोई भूल नहीं सके कोटी कोटी नमन है मन रेरा फूल चढ़ाऊं बड़े
1: बड़े नौलबा आज रे दिन अपारे फोत होई सरोज खान जी अपार नौलबा मुंबई होती और एक कोरियोग्राफर ही है 200 हाली फिल्मा में नी नौलबा काम करियो।
0: ओ कोई में कोई खास अदाकारी करी
1: ए नौलबा बेन फिल्मा में जी का गाना वे नी उन महीने डांस करनो ही कवे।
0: ओ ठीक नाच रो गाऊ ठीक ठीक।
1: हाँ।
0: तो आरी है क्या नी भाई मोटो नाम है तो आरी दो आखरी रो कह नी के है तो कोई नवा ही है कोई घना जूना कोनी।
1: हाँ।
0: तो आर कोई दो आखरी रो कोई एडो कह नी के जिन माते कह नाच कूदो करायो।
1: हाँ।
0: तो हुणा देखन ठा पड़े मनी
1: हुणा नौलबा

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: ठीक है डोला डोला डोला डोला बात वाह वाकई कौन बढ़िया काम करिया भाई यानी क्या कि जितना गुल पेश करा कोटी कोटी नमन करा बड़े
3: नौलबा। आज के दिन अपारे फोत होया मोहम्मद उस्मान जी ए अपारे नौलबा उत्तर प्रदेश हा और अपारे भारतीय सेना में यानी एक अधिकारी हा और यहाँ पर 1947 में जिम टाइम भारत पाकिस्तान रो युद्ध होयो नी उम टाइम यहाँ पर जम्मू में शहीद होया होता और एन यहाँ पर नौलबा महावीर चक्र भी सम्मानित।
2: भाई देखे देश रिवाज तक प्राण देना मोटी बात है और शहीदारी तो मोटी बात है। शहीदा ने कोई नहीं भूल सके आने पर बात है पर धोख दा कोटी कोटी नमन करा मंदेरा फूल चढ़ावा बड़े
3: नौलबा। आज दिन अपर फोत होया मनोज कुमार पांडे जी ए भी अपर उत्तर प्रदेश हा नौलबा और भारतीय सेना रा अधिकारी हा ए अपर 1999 में जिको कारगिल युद्ध होया ना उन महीने नौलबा शहीद होया।
2: भाई वो भी भाग रहा होगा जो कह नहीं के युद्ध लड़ी जियो और उम्र शहीद जड़े कह नहीं के दर्जे मत गया तो भाई देखे आनी है जो कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है और मंदेरा फूल चढ़ावा पर बात पर धोखदा शहीदा मत कोई एक दो आंकड़ी रो गीत सुना भाई
3: सुना नौलबा क्या।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: वाह भाई वाह नियाल कर दिया, कहनी मिट्टी के लाल है और कह देश रिवाज से नाच जान न सा और करनी मोटी बात है, हम ही कहनी वीर गति जिको कहनी ग्रहण करे बहुत सूरा है
1: वे।
0: तो वाह भाई बढ़िया सौ की बात होगी, नहन बली होगी हमें भाई बैलगाड़ी तैयारी तो थाने करनी पड़ी
1: नौल बार रोज रोज दामो दवाई ले बो
0: अरे दवाई ले बके कोनी हर गरम है मारे वही जो वही मम्मी कर
1: हाँ
0: मने है जिको दो आंकड़ी कोई अर्जी
1: अर्जी सुना ना
0: हाँ
1: हुना हूँ नौल।

0: वाह भाई ये वाह हूं लियो हरजस रैंक बातें भली होगी रसोड़े में पधारो थोड़ो तपनो हो थारे जस जी को भोजनी बना लो और हूं फेर लू माला माला फेर बैठो हूं जिसे बेड़ू कर दो त्यार न मैं देखे तारा ही खासा ऊंचा आएगा और अंदाज भी पड़गो है प्रोग्राम रो टाइम ही वह है पूरो तो भाई शरण हमें लेवा ही
1: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में पहली पेशकश अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के स्वरों में, बोल हैं समीर के और संगीत है नदीम श्रवण का। फिल्म का नाम है फूल और कांटे।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में अगली पेशकश है कुमार सानू के स्वरों में, जिसके बोल हैं कातिल शफल के और संगीतकार हैं अनु मलिक। फिल्म का नाम है सर।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: कार्यक्रम फिल्म संगीत में ये गीत हम सुन रहे हैं उदित नारायण की आवाज में, बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है जतिन ललित का और फिल्म का नाम है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के

0: रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: आइए सुने अगला गीत, जिसमें तर्ज है समीर की, संगीत है नदीम श्रवण का और बोल स्वर हैं कुमार सानू के। फिल्म का नाम है दिलवाले।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

ये स्वर हैं अभिजीत के, बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत है जतिन ललित का। फिल्म का नाम है यस बॉस।

राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ, स्थानीय लोगों को घर

0: गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

ये स्वर हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के। गीत के बोल लिखे हैं संजय छैल ने और संगीत है जतिन ललित का। फिल्म का नाम है खूबसूरत।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में आइए सुने अगला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

दिलीप सेन और समीर सेन के संगीत से सजा ये गीत हम सुन रहे हैं, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने और स्वर हैं लता मंगेशकर कुमार सानू के। फिल्म का नाम है ये दिल लगी।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
2: फिल्म संगीत का सफर बस यहीं तक। श्रोताओं, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ।

0: लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: सुगम संगीत में पहली रचना, आइए सुनते हैं पलाश की।

0: क्षमा कीजिए, आइए सुनते हैं समाचार संध्या जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा है।
1: रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
2: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
3: India's development assistance.
1: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
2: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
4: Prime Minister will also be visiting.
5: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
2: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलते सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी।

0: गई है जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल

0: कल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7:00 घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अब न्यूज एट नाइट दिल्ली केंद्र से।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: सुगम संगीत में आइए सुने अगला गीत, जिसके बोल लिखे हैं नुसरत बदर ने और स्वर हैं सोनू निगम के।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: सुगम संगीत में अगली रचना आइए सुने आतिफ असलम के स्वरों में।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: इसी के साथ सुगम संगीत का सफर अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सुने पहला गीत रफू चक्कर फिल्म से।

इस गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, और स्वर है आशा भोसले शैलेंद्र सिंह के।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: ये स्वर थे अमित कुमार के। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम था तेरी कसम। आइए सुने अगला गीत, उससे पहले एक विज्ञापन अंतराल।
1: मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: आइए सुने अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में। बोल हैं कैफ भोपालपुरी के और संगीत निर्देशन है गुलाम मोहम्मद का।

0: जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का। राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: फिल्म संगीत में अभी हमने ये जो गीत सुना उसमें स्वर थे मोहम्मद रफ़ी के, बोल थे शैलेंद्र के और संगीत निर्देशन था एसडी बर्मन का।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत और आइए फिल्म संगीत में अगली रचना एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन से सजी साहिर लुधियानवी के बोल और गीता दत्त के स्वर। फिल्म का नाम है बाजी। आइए सुने ये गीत।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
2: आज की फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश, आइए सुने मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वरों में। बोल हैं शैलेंद्र के और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: इसी के साथ फिल्म संगीत का सफर अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।

कार्यक्रम मन चाहे गीत, और मन चाहे गीत में श्रोताओं के ईमेल और पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत को हम प्रसारित करते हैं। तो हमें कई सारी मेल्स प्राप्त हुई हैं, उन मेल्स को मैं आप तक पहुंचाऊं। सबसे पहली मेल जो हमें मिली है वो है विनोद कुमार बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, शगुन बारासा, गांव खोखरावाली, श्री गंगानगर से।

एक और मेल हमें मिली है, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वी खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना।

है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत, और मन चाहे गीत में हमें बहुत सारी मेल्स प्राप्त हो रही हैं। जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपिका जायसवाल, स्वाति जायसवाल ने हमें मेल भेजी है।

गोडगेनगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेंद्र लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे और रक्षता लोखंडे ने भी हमें मेल भेजी है। इसी तरह से ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद उमेश वर्मा ने भी हमें मेल भेजी है। चलिए बढ़े चलते हैं सुरों के साथ और सुनते हैं ये एक और गीत।

कार्यक्रम मनचाहे गीत, और इसमें हमें श्रोता बहुत सारी मेल्स भेज रहे हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज और साहिल, इन्होंने हमें मेल लिखी है।

गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और उनके साथियों ने हमें मेल लिखी है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वी खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना ने भी हमें मेल लिखी है। चलिए सुनते हैं मनचाहे गीत में ये अगला गीत।

ईमेल से फरमाइश करके फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम चल रहा है, मन चाहे गीत। आप भी यदि चाहें हमें मेल करना तो आप हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए, manchaeghe-gwt531@gmail.com। एक बार पुनः सुनिए, मन चाहे गीत 531@gmail.com। इस पर आप चाहें तो हमें मेल कर सकते हैं और हम आपकी मेल को हमारे कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, शामिल करते हैं। तो हमें कई सारी मेल्स मिली हैं, छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कॉपस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले और उनके सारे जो फूलवाले फैमिली है उसके सारे मेंबर्स ने हमें ये पत्र भेजा है, मेल भेजी है। इसी तरह से एक और मेल हमें मिली है मारहरा दरवाजा एटा से, नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी। एक और मेल हमें मिली है मोताला महाराष्ट्र से, विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, ओम कुमार सुरलकर। आप भी हमें अपनी फरमाइश लिखकर भेजना चाहते हैं तो हमारा हमें मेल कीजिए और सुनिए मन चाहे गीत।

मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन की मेल हमें प्राप्त हुई है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेचा, पूनम गगनेचा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा की मेल हमें मिली है। नांदेड़ से प्रभाकर जोंढाले की मेल भी हमें मिली है। गांव हीरा फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा की मेल हमें मिली है। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी की मेल भी हमें मिली है। चलिए सुनते हैं ये अगला गीत।

फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम फरमाई मन चाहे गीत, और इसमें हमें ये अगला मेल भेजा है प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव और पूरा उनका जाधव परिवार। इसी तरह से एक और मेल हमें मिली है सोपान आडोकर, वसंतराव भोजने, पीएस नवकर, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार रेडियो रिपोर्टर हैं, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी, इन सबकी मेल हमें मिली है।

मन चाहे गीत फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम, और इसमें हमें मेल मिली है गांव जाखोद से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक की। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत प्रवीण अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों की भी हमें मेल मिली है। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, सुलेह हसन अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान की मेल भी हमें मिली है। सारण नगर बाड़मेर से महराज सारण, हीरो हितेश राज और नवप्रीत की मेल भी हमें मिली है। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगीज खातून की भी मेल हमें मिली है।

0: जाओ ना, क्यों सताते हो? होगा होगा।
1: मेल समय मिलती जा रही हैं। भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा, सुरिंदर कौर रंधावा की मेल हमें मिली है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता की मेल भी हमें मिली है। गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट और तमन्ना कांगड़ा की मेल हमें मिली है। भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा, सुरेंद्र कौर रंधावा की मेल हमें मिली है। ये सब हमसे सुनना चाहते हैं, ये

मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें अगली मेल मिली है बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा की। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार की मेल भी हमें मिली है। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा की मेल भी हमें मिली है। बुल्डाना बड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार की मेल भी हमें मिली है।

मन चाहे गीत के लिए हमें मेल मिली है बुल्ढाणा बड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर शोभाताई मानकर दीपाली और श्लोक कुमार बुल्ढाणा इस्लामपुर से सहदेव दामोदर शशिकला दामोदर सुमेध कुमार रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी की भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा कमिल चीपा कपिल चीपा ईशान चीपा पूजा परिहार की मेल हमें मिली है गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार चेतन सुतार सारिका सुतार की मेल भी हमें मिली है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लो नायक मधु नायक की मेल भी

0: प्रेम पुजारी फिल्म के इस गीत के साथ ही आज के मनचाहे गीत फरमाइशी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। प्रस्तुत है समाचार। समाचार पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में होंगे और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले हो रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11%

की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग

0: पंद्रहवें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: Prime Minister will also be visiting...
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।